सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की तिथि 30, तदनुसार 20 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है खेती की बातें। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे औषधीय पौधों की खेती विषय पर कृष्णा कावेरी से।

किसान भाई बहनों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे औषधीय पौधों की खेती के विषय में। श्रोताओं, औषधीय पौधों की खेती पारंपरिक फसलों के मुकाबले अधिक मुनाफेदार साबित हो सकती है। किसान भाई बहनों, आइए जानते हैं कि औषधीय खेती कैसे करें। सफलतापूर्वक औषधीय खेती शुरू करने के लिए अपने खेत की जलवायु और मौसम के अनुसार ही फसल का चुनाव करें। खरीफ फसलों की श्रेणी में यानी बरसात के मौसम में तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास और अश्वगंधा की खेती आप कर सकते हैं। और रबी फसलों की श्रेणी में यानी सर्दियों के मौसम में इसबगोल, कैमोमाइल और चिया की खेती आप कर सकते हैं। श्रोताओं, औषधीय खेती लगभग सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। औषधीय खेती शुरू करने के पहले अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, ताकि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व का पता चल सके। किसान भाई बहनों, सबसे पहले अपने खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करके पाटा लगा लें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। अब बात आती है बीज की, तो हमेशा प्रमाणित और उन्नत बीज ही लें या फिर अच्छी नर्सरी से तैयार पौधे लें। श्रोताओं, प्रमाणित बीजों और पौधों के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, इन पौधों की अच्छी गुणवत्ता के लिए रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद यानी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। औषधीय पौधों में प्राकृतिक रूप से कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है, फिर भी बचाव के लिए नीम के तेल का छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाई बहनों, अब बात आती है फसल की कटाई, प्रोसेसिंग और भंडारण की। औषधीय पौधों की कटाई हमेशा सही समय यानी जब उनमें औषधीय गुण सबसे ज़्यादा हो उस समय पर करनी चाहिए। श्रोताओं, कटाई के बाद फसल को धूप में सुखाने की बजाय छांव या सोलर ड्रायर में सुखाना बेहतर होता है, ताकि तेल या औषधीय गुण नष्ट ना हो। किसान भाई बहनों, अब बात आती है औषधीय फसल की बिक्री यानी मार्केटिंग की। तो सीधे बाजार में बेचने से पहले आप आयुर्वेदिक कंपनियों जैसे डाबर, बैद्यनाथ आदि फार्मा कंपनियों या स्थानीय व्यापारियों के साथ बायबैक एग्रीमेंट कर लें, जिससे आपकी उपज का उचित मूल्य सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB और राज्य सरकारों ने आयुष विभाग द्वारा भी औषधीय खेती पर किसानों को भारी सब्सिडी देती है, साथ ही औषधीय खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई बहनों, इसके साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

चिंतन बिगड़ी हुई जनता वह जन प्रवाह जल प्रवाह है जो किसी के रोके नहीं रुकता। प्रेमचंद।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ा।

कतर जुटे वतन बढ़ाए कुशेर हिंद आगे बढ़ बने से फिर भी तू नडर उड़ा के दुश्मनों का सर जुटे वतन बढ़ाए कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा कदम कदम

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुन पाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भक्ति।

आपने चुन किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं अगली रचना दिलराज कौर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

पीला सुलाके के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

ये आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं ये आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
1: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ऑस्लो, नॉर्वे।
0: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गजल। 7:20 का समय होता है लोक गीतों का और 7:35 पर हमारे श्रोता सुनते हैं बांग्ला गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। सुबह 8 आप सुन सकते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से प्रसारित किया जाता है मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर श्रोताओं आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से गाने। 9:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 11 और दोपहर 12 श्रोताओं आप सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 का हमारा समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और दोपहर 12:05 पर आप सुनते हैं भावगीत। 12:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2 मिड डे न्यूज़, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 3:45 पर लोक गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 4:05 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं नाटक या रूपक। 4:30 पर आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं। 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम कल कारखाने की प्रस्तुति होगी। संध्या 6 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर श्रोताओं आप आनंद लेते हैं झारखंड के लोकगीत का और 6:30 पर आज आप सुनेंगे घर गृहस्थी। संध्या 7 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुन सकते हैं 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का और 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम जिज्ञासा। रात्रि 8 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से प्रसारित किया जाता है रात्रि 9 न्यूज़ एट नाइट और 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम स्वर्णरेखा और 10:30 पर सुनवाया जाएगा शास्त्रीय संगीत। रात्रि 11 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। श्रोताओं अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे फनकार गुलाम अली की गाई गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फनकार होला मलिक की गाई ये गज़ल, और इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। लोक गीतों के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी गीत भारत सिंह और भारती देवी सिंह।

के सवारी हो मैया, अरे सतति के भंडार जगवा में हो खेला, अरे जगवा।

जन के काया दिहलू अरे जानत बा संसार बांधी के

चरा में खेले मैया विधि के

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी गीत भारत सिंह और भारती देवी से। इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरांजलि लेकर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम सुरांजलि में आप सुनेंगे सबसे पहले मन्ना डे के स्वर में ये गीत।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा की आज के इस अंक में हमारे श्रोता सुनेंगे भेंटवार्ता, डायबिटीज का आंखों पर असर विषय पर। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर श्वेता देव, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज का असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे कि डायबिटीज का असर हमारे आंखों पर क्या होता है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता देव। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, आंखों में डायबिटीज का क्या असर होता है?
2: जी, डायबिटीज का आंखों में काफी गहरा असर होता है। इसके वजह से आंखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको हर 6 महीने पे आंखों का जांच करवाते रहना चाहिए। एक ये रूटीन शेड्यूल उनका होना चाहिए। उसमें हम लोग उनका फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उनके आंख में सूजन है या नहीं है, या पर्दे में जो खून की नाली है उसमें फट जाता है। मेन यही मुख्य कारण है कि उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उन लोगों में एक मोतियाबिंद कैटरैक्ट, जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रोन होते हैं कंपेयर टू जो जनरल पेशेंट होते हैं। उनमें ये 100% मिलता है उन लोगों में, इसीलिए उनको हर 6 मंथ्स पे चेकअप होता ही रहना चाहिए।
1: तो शुगर का लेवल किस लेवल तक बढ़ने से आंखों पे उसका सीधा असर होने लगता है?
2: जैसा कि सब ही लोग जानते हैं, फास्टिंग में 70-110 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। पोस्ट प्रेंडियल आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील और ब्रेकफास्ट वो 140 तक एक्सेप्टेबल है मिलीग्राम, ये ऐसा WHO ने भी बोला है। और जो रैंडम होता है वो 160 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए।
1: आजकल डायबिटीज अक्सर लाइफस्टाइल बन गया है और मैक्सिमम लोग इससे प्रभावित हैं, तो किस तरह का बचाव हम कर सकते हैं ताकि उनकी आंखें बची रहें, स्वस्थ रहें और जो मधुमेह के शिकार हैं वो अपना पूरा शरीर का ख्याल रख सके?
2: जी, ऐसा है कि आजकल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसी के वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी या हाइपरटेंशन हो जाता है। लोग अधिकतर टाइम फिजिकल वर्क ना करके डिजिटल लाइफ है, इस वजह से लोग कंप्यूटर गैजेट्स हैं उस पे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसके वजह से डायबिटीज होना आम हो गया है अभी के टाइम में। इसके लिए उनको हर मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक करना चाहिए। सुबह डाइट कंट्रोल करना चाहिए, लेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जिसमें पोटैटो, राइस ये सब नहीं होना चाहिए, ना के बराबर। और प्रोटीन अपने खाने पीने में प्रोटीन इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स लें जिसमें फाइबर्स, रफेज वगैरह होगा। और अगर बहुत ही ज्यादा जो रेगुलर डायबिटिक है तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो उस केस में वो एंटी डायबिटिक जो दवाइयां हैं तो वो अपना रेगुलर लें ताकि उनका डायबिटीज कंट्रोल में रहे।
1: तो आंखों का किस तरह का जांच करवाना चाहिए जिससे कि पता चले कि आंखों में कुछ खराबी आ रही है, या फिर कुछ लक्षण ऐसे आंखों में दिखने लगते हैं जिससे पता चले कि डायबिटीज के कारण आंख में कुछ असर हो रहा है?
2: जी, ऐसा है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है विजन लॉस, डिमिनिशन ऑफ विजन, उनको देखना एकदम से अचानक बंद हो जाता है, इसीलिए रेगुलर चेकअप होनी चाहिए। दूसरी बात है, हमारे पास जब वो आते हैं तो हम रेगुलर जैसे आंख में दवाई डाल के 1 घंटा देखते हैं, डायलेट करके देखते हैं ताकि मैं उनका फंडस एग्जामिन कर सकूं। अगर डायबिटीज की वजह से छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें नए ब्लड वेसल्स का, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू वेस्कुलराइजेशन का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें FFA करते हैं, ये फंडस पिक्चर लिया जाता है। और अभी आजकल के जमाने में OCT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता चलता है कि किस लेयर में डायबिटिक है और किस लेयर ज्यादा प्रभावित हुआ है डायबिटीज की वजह से।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि मधुमेह का असर आंखों में तो होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय समय पर अपना शुगर लेवल का चेक कराते रहें और उसे मेंटेन करके रखें तो आंखों पर उसका असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। डॉक्टर साहिबा, आपने काफी उपयोगी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता डायबिटीज का आंखों पर असर विषय पर। भेंट वार्ता का थी डॉक्टर श्वेता देव। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
2: India is accelerating towards universal health coverage.
3: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
2: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
6: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
7: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
8: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
9: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
10: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नई यात्री सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे मौजूद। रांची में CII की राउंड टेबल बैठक सम्पन्न। उद्योग सचिव ने कहा, झारखण्ड में 1.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रांची के निजी स्कूलों में लॉटरी पूरी। 641 बच्चों का मुफ्त नामांकन के लिए चयन। बोकारो, धनबाद और देवघर समेत राज्य के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की चेतावनी। और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। सीनियर और जूनियर वर्ग में जीते विजेता और उपविजेता के खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू आज सवेरे 10 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर नवनिर्मित बिरसा मुंडा की प्रतिमा सहित फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाई प्रेरी का उद्घाटन और अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक SS राजू ने कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची में आयोजित CII की राउंड टेबल बैठक में उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड देश के 44% खनिज संसाधनों के साथ सबसे उपयुक्त निवेश स्थल है। रांची में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं हैं और रांची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य में मैट्रिक और इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की चिंता बढ़ गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी क्रेडिट योजना बैंकों की उदासीनता के कारण धीमी चल रही है। 15 लाख रुपए तक के इस लोन में हो रही देरी पर अब पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार पर सोची समझी साजिश के तहत बैंकों से लोन रुकवाने का आरोप लगाया है।
1: बच्चों को लोन देने की बात है, वहाँ पर बैंक तरह तरह के जो है हथकंडे अपना किसी तरह से बच्चों के लोन को रोक रहा है, पर इस पूरी प्रक्रिया में हमारी जानकारी है वो यह है, इसमें बैंक जिम्मेवार नहीं है, बल्कि बैंक को इंस्ट्रक्शन साफ साफ ऊपर से फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है कि जानबूझ करके कम से कम बच्चों का लोन जो है अप्रूव किया जाए और उसको टेक्निकल कारण बता के रिजेक्ट किया जाए।
0: वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार के राजनीतिक दखल और साजिश के कारण बैंक इस योजना में उदासीन रवैया अपना रहे हैं।
2: देखिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना यह सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को संभालने का एक महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन दुख है कि केंद्र की सरकार लगातार इस राज्य के प्रति सौतेलापन का व्यवहार तो करती ही है, बैंकों के द्वारा इस योजना पर भी ग्रहण लगाने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा है।
0: राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही NTPC समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने कल रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पुनर्विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण के मामले की जांच तेज हो गई है। झालसा की टीम ने प्रारंभिक जांच में आरोपों को सही पाया है। इधर रांची उपायुक्त ने ADM लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जाँच समिति बनाई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट

0: सौंपेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक सैंडल, HIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल HIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। रांची के SDM कुमार रजत ने बताया कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर हुई इस पारदर्शी प्रक्रिया में 89 निजी विद्यालयों की आरक्षित सीटों के लिए बच्चों का चयन किया गया है।
1: 1499 एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से 1036 एप्लीकेशंस जो हैं वो करेक्ट पाए गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो 25% जो भी सीट्स हैं उसको हम लोग फुलफिल करेंगे और उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
2: इस स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा?
1: एक पेरेंट्स जो है वो 3 स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है उसमें एक इनकम का क्राइटेरिया है, एक उसमें डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, इसके अलावा बाकी अपना जो आधार कार्ड और ये फॉर्मूला है।
0: रांची नगर निगम ने नगर आयुक्त के नाम पर आ रहे फर्जी व्हाट्सएप संदेशों को लेकर अलर्ट जारी किया है। निगम ने बताया कि +84 से शुरू होने वाला नंबर पूरी तरह फर्जी है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसे संदिग्ध नंबरों पर अपनी बैंकिंग या निजी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। रांची के नामकुम पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी ने गुप्त सूचना के आधार पर सिद्रौल जोड़ा मंदिर के पास घेराबंदी कर यह कार्रवाई की।
3: नामकुम थाना क्षेत्र का सिद्रौल जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटीग्राम चेकिंग लगाई गई थी और उसी समय एक व्यक्ति जिसके पास में एक ब्लू रंग का अपाचे बाइक था उसको हम लोगों ने पूछताछ की। उसने बताया कि जो बाइक है उसके पास में वह चोरी की बाइक है, नंबर प्लेट जो है वो भी चोरी का ही है। बाइक को वो बेड़ो का एक वसीम औहदार है उसके पास लेके जा रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज बोकारो, धनबाद और देवघर समेत 9 जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची, हजारीबाग और सिंहभूम सहित अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाओं के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और वर्षा हो सकती है। झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर शानदार सफलता हासिल की है। ताशकंद रग्बी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे डेविड मुंडा का रांची में भव्य स्वागत हुआ। वहीं रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सीनियर पुरुष स्ट्रोक और महिला फेयरवे वर्ग में झारखंड की टीम विजेता बनी। वहीं जूनियर बालक स्ट्रोक, जूनियर बालिका फेयरवे और जूनियर बालक फेयरवे प्रतियोगिताओं में टीम ने उपविजेता का खिताब अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टेस्ट टीम की कप्तानी शुभमन गिल और उप कप्तानी KL राहुल करेंगे, जबकि वनडे में श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। इस सीरीज के लिए झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की 3 साल बाद वनडे टीम में शानदार वापसी हुई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से CII प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, महिला पार्षद का आरोप, बैठक में मेरी आपत्तिजनक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाला। हिंदुस्तान ने पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। प्रभात खबर के शब्द हैं, वित्त मंत्री का बड़ा सवाल, घोटालेबाज DDO CID जांच टीम से दूर है ना, सुनिश्चित करें। दैनिक जागरण ने लिखा है, सबसे गर्म रहा पलामू, कई जिलों में पारा 40 के पार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नई यात्री सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे मौजूद। रांची में CII की राउंड टेबल बैठक संपन्न, उद्योग

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: साथियों हमारे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, कहते हैं कि सुबह की शुरुआत अगर खूबसूरत यादों के साथ हो तो पूरा दिन मुस्कुराते हुए गुजरता है, और जब बात गुजरे ज़माने के सुनहरे दौर की हो तो जहन में ये गीत उभर आता है।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आरोप से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की ये आवाज़ें थी। माया गोविंद ने इस गीत को रचा था और संगीत निर्देशन था भूपेन हजारिका का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

स्थानीय समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

0: और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौते होने पर संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमानों को संचालन रोक दिया गया था। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था। इसके बाद इकाई को सेवा योग्य घोषित किया गया। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरंजना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 से 11 तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 से 1 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
5: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
6: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
6: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
6: हेलो डॉक्टर,
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे एक ही फिल्म के गाने, और आज की फिल्म है विवाह।

आपने सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल को। आज श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विवाह के गाने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म विवाह के गाने। आवाजें श्रेया घोषाल और उदित नारायण की है। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: पामिला जैन और श्रेया घोषाल को अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया फिल्म विवाह के गाने। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग अलहया विलावल पर आधारित सरोद वादन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग अलहया बिलावल पर आधारित सरोद वादन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा

0: शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, in another post, the Prime Minister thanked the Indian community in Italy for the warm welcome in Rome last evening. Mr. Modi said that their deep affection for India and commitment towards strengthening India-Italy ties are truly commendable. He added, the Indian diaspora continues to make the nation proud across the world. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a shared responsibility yesterday, Mr. Nadda highlighted India's progress towards universal health coverage anchored in a whole-of-government and whole-of-society approach.
4: India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses.
3: U.S. Secretary of State Marco Rubio will undertake a four-day visit to India beginning May 23rd. This will be his first visit to India. U.S. State Department has announced the visit that will take Rubio to Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. State Department spokesman Tommy Pigott said Secretary Rubio will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. U.S. Embassy in New Delhi said that India will host a meeting of the Quad Group, which includes Australia, Japan and United States, and Secretary Rubio will attend the meeting. India is set to host a meeting of Quad foreign ministers next week that is expected to deliberate on pressing global challenges, including the fallout of the West Asia crisis. The West Bengal government will roll out Annapurna scheme, providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary or pension from state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies or government-aided educational institutions. West Bengal government has also notified a list of 66 classes of OBCs for reservation in the services and posts under the state government following the Calcutta High Court order. The state government has also cancelled the 10% reservation for OBC-A and 7% reservation for OBC-B. The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heatwave conditions over the national capital till 25th of this month. Isolated places in the city are likely to reel under intense heat during the day, with maximum temperatures expected to be around 44 to 46 degrees Celsius today. Stock markets were trading in the red this morning as Sensex went down over 500 points and slipped below 75,000 mark. Nifty, on the other hand, also went down by over 150 points. Asian markets were also down as traders assessed the US-Iran tensions. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will clash with Mumbai Indians at Eden Gardens, Kolkata. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, riding on a brilliant knock of 93 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night, chasing 221 runs set by Lucknow Super Giants. Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurail scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Put into bat first, Lucknow Super Giants made 220 for 5 in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक को लेकर बेहद उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रि भोज पर मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर इस दौरान अपने विचार साझा किए। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कल शाम रोम में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय का धन्यवाद किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहन स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
4: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री रूबियो कोलकाता, नई दिल्ली, आगरा और जयपुर जाएंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया है कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमरीका के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड समूह में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर कल रात पेइचिंग पहुंचे। इस दौरान श्री पुतिन चीन के राष्ट्रपति

शी चिनफिंग के साथ वार्ता करेंगे। श्री पुतिन की ये यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा संपन्न होने के एक सप्ताह से भी कम समय में हो रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री पुतिन की ये यात्रा वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नाइजीरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान में इस्लामिक स्टेट के 175 आतंकवादी मारे गए हैं। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता समाइल उबा ने कल कहा कि अभियान के दौरान संयुक्त हमलों में चौकियों, हथियार डिपो, रसद केंद्रों, सैन्य उपकरणों और आतंकी गतिविधियों को मदद देने वाले वित्तीय नेटवर्क के मुख्यालयों को नष्ट किया गया। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री रोजर काम्बा ने ये जानकारी दी। कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में 543 संदिग्ध मामले और 32 पुष्ट संक्रमण दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में 2 मामलों की जानकारी मिली है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग के एक सहायक सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी कल सुबह खुलशी इलाके में दूतावास परिसर में मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 35 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है। वे हरियाणा के रहने वाले थे और चट्टोग्राम स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत थे। दूतावास कर्मियों ने नरेंद्र के कमरे से कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चट्टोग्राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूडान के मध्य क्षेत्र में एक व्यस्त बाजार पर ड्रोन हमले में 28 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। पश्चिम कोदोफान प्रांत के घुबैश शहर के बाजार को उस समय निशाना बनाया गया जब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। समूह ने हमले के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि सूडानी सेना ने इन आरोपों से इनकार किया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है। इनमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल एआई एजेंट भी शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस

0: बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर,
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर और अब हम हाजिर हैं शुरू के इस सफर में। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं पहला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म मल्हार से। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं रोशन।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। विश्वास फिल्म से हेमलता और मुकेश की आवाजें हैं। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

स्वीकार किया मैंने। आइए सुनवाते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। निदा फाजली की रचना है और संगीत उषा खन्ना का है।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: मुलाकात हो गई

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा मर जाओ।
1: हाँ।

अजनबी फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शे के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर के युगल स्वरों में इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। संगीत निर्देशन आनंद मिलन का है और ये गाना है फिल्म हनीमून से।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, यारा दिलदारा फिल्म से। आवाज़ें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और धुन जतिन ललित का है।

और अब लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं इस त्रितो फिल्म का ये गाना। विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की ये आवाजें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को रचा है। संगीत निर्देशन सचिन जिगर का है।

0: फिल्म स्त्री टू के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: کے ساتھ میں کنک لتا۔ پردھان منتری نریندر مودی آج روم میں اٹلی کے پردھان منتری جارجیا میلونی سے وارتا کریں گے۔ دونوں نیتا بھارت پشچم ایشیا یوروپ آرتھک گلیارے کے لیے سہیوگ بڑھانے پر چرچا اور ورش 2025 سے 2029 تک سنیکت رنتک کاروائی یوجنا کی سمیکشا کریں گے۔ ہمارے سنواددتا نے بتایا ہے کہ اس یاترا کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار، رکشا پریوہن، سمندری سرکشا، بندرگاہ سمبندی سہیوگ اور سوچھ اورجا سہت پرمکھ کھیتروں میں سمجھوتوں پر ہستاکشر ہونے کی سمبھاونا ہے۔
1: پردھان منتری نریندر مودی آج کوئرینل پیلس میں اٹلی کے راشٹرپتی سرجیو ماتاریلا سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پردان کیا جائے گا۔ آج کے کارکرموں میں پرتندھی منڈل استریہ وارتائیں، پریس وکتویا، سمجھوتا گیاپنوں کا آدان پردان، دوپکشی بیٹھکیں اور کھادے ایون کرشی سنگٹھن کا دورہ شامل ہے۔ پردھان منتری مودی مورس نگرا بلیک ملبری کا پودا بھی لگائیں گے۔ یہ ایک ایسی پرجاتی ہے جو اپنے پاک औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: Hollywood.
1: कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आज मैं हूं अनिमा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारी तरंगे, हमारी वाइब्स हमारे कर्मों में भी चली आती हैं। ऐसे में हमें एक छोटी सी आदत बदलनी होगी। हमें अपने लिए नॉर्मल की परिभाषा में परिवर्तन लाना होगा। यानी तनाव नॉर्मल है या शांति, गुस्सा नॉर्मल है या करुणा, खींच नॉर्मल है या समझ, आलोचना नॉर्मल है या सराहना, तुलना नॉर्मल है या आत्मसम्मान, ईर्ष्या नॉर्मल है या आशीर्वाद, प्रतिस्पर्धा नॉर्मल है या सहयोग। वास्तव में ये तो बहुत ही सरल प्रश्नावली है। इन तमाम सवालों के जवाब तो आपने तुरंत ही दे दिए हैं, है ना? फिर भी हम एक अलग दुनिया में क्यों जी रहे हैं? हम नकारात्मक चीजों को नॉर्मल क्यों मानने लगे हैं? नॉर्मल की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपने मन को कहा है कि गुस्सा, तकलीफ, तुलनाएं, प्रतिस्पर्धा ये सब नॉर्मल है, तो वो वही सब क्रिएट करता चला जाएगा। हमें किन्हीं भी लो वाइब्रेशन शब्दों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपने मन में। इस तरह के हर वो शब्द जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो एक एनर्जी है। वो हमारी मानसिक सेहत को बना रहे होते हैं। उसी शब्द की वाइब्रेशन हमारे शरीर में जा रही होती है, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बन रहा होता है। जो शब्द लोगों की तरफ जा रहा होता है, वो हमारे रिश्तों को बनाता है। श्रोताओं, तो हमारे शब्दों की ही ऊर्जा है जो वातावरण में फैल रही है। हम ये तो देखते हैं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं, बंगला में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम लो वाइब्रेशन वाले शब्द बोल रहे हैं या हाई वाइब्रेशन वाले शब्द बोल रहे हैं। अगर हम अपने आप में ये बदलाव ले आए, तो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते नाते, हमारे आसपास का माहौल, सब कुछ बदल जाएगा। संकल्प से सृष्टि बनती है, शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। भाषा बदली तो हमारा आभामंडल भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों जुड़ा हुआ है।

आप सुन रहे थे प्रार्थना अंकुश फिल्म से पुष्पा बगधरी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार थे अभिलाष, संगीतकार कुलदीप सिंह।

0: श्रोताओं, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जांसा की जयंती के उपलक्ष में चुना गया है। उनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। स्लोवेनिया के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इसे घोषित किया और पहली बार 20 मई 2018 को ये दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया। दुनिया की लगभग एक तिहाई फसलें और 90% जंगली फूल वाले पौधे प्रजनन के लिए मधुमक्खियों और अन्य कीटों पर निर्भर हैं। श्रोताओं, हमारे खाने में मौजूद लगभग हर तीसरा कौर मधुमक्खियों द्वारा किए गए परागण का ही परिणाम है। भारत में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन चलाया जा रहा है। झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आय का एक बड़ा और अतिरिक्त साधन बन गया है।
1: कभी नरम नरम कभी सत्य सत्य मोरा सिया

0: प्रमो
1: ईआर रहमान के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे महबूब का लिखा ये गाना, मधुश्री और ईआर रहमान की आवाजों में। फिल्म का नाम था युवा।

श्रोताओं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का आज है जयंती। 20 मई सन 1900 को उनका जन्म कोसानी में, जो आज अभी वर्तमान में उत्तराखंड में है, कोसानी में हुआ था 20 मई सन 1900 को। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। वे एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु में भी काव्य रचनाएं करना शुरू कर दिया था। उनके कविता संग्रहों में पल्लव, उच्छ्वास, मेघनाद पद, बूढ़ा चांद शामिल हैं। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध और अनुवाद में भी योगदान किया है। उन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1968 में चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से

सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मभूषण से अलंकृत किया और उन पर डाक टिकट भी जारी किया गया। भारत में जब टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ तो उसका भारतीय नामकरण दूरदर्शन सुमित्रानंदन पंत ने ही किया था। उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर देश की सेवा की और अपने काव्य यात्रा के दौरान प्रगतिशील और दार्शनिक रचनाएं भी की। उनका अंतिम समय प्रयागराज में बीता, जहां 28 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया।

आप सुन रहे थे हाउस नंबर 44 फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत रचना साहिर के थे, संगीत से सजाया था सचिन देव बर्मन ने।

श्रोताओं, आज है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक विपिन चंद्र पाल की पुण्यतिथि। उन्हें लाल बाल पाल त्रयी का हिस्सा माना जाता था, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी और अंग्रेजों के खिलाफ उग्र राष्ट्रवाद को मजबूत किया। उनका जन्म 7 नवंबर 1858 को हावीगंज में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र पाल, जो फारसी भाषा के विद्वान थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा सिलहट में प्राप्त की उन्होंने, और बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। विपिन चंद्र पाल ने भारतीयों में आत्मसम्मान और स्वदेशी भावना जगाने का काम किया। वे मानते थे कि केवल याचना से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि जनता को जागरूक और संगठित होना होगा। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया, भारतीय उद्योगों और वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया। वे एक अच्छे वक्ता और पत्रकार भी थे। उन्होंने कई समाचार पत्रों में भी काम किया।

उनके लेखों ने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई। विपिन चंद्र पाल उदारवादी नेताओं से अलग थे, वे पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। राष्ट्रीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर वे जोर देते थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर बोलते थे विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल ने भारतीय राजनीति में नई ऊर्जा पैदा की। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और विपिन चंद्र पाल बंगाल से, इन तीनों नेताओं ने युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 20 मई 1932 को उनका निधन कोलकाता में हो गया। विपिन चंद्र पाल को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास, स्वदेशी भावना और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

0: शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे माँ तुझे सलाम फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा था विक्की दायत ने और संगीत से सजाया था साजिद वाजिद ने।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं अनिमा। इस समय दिन के 11:38 हो रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई आपसे करते हैं ढेर सारी और बातें।

श्रोताओं, आज है विश्व माप विज्ञान दिवस। 20 मई को मनाया जाता है हर साल विश्व माप विज्ञान दिवस। ये दिन माप और तौल की विज्ञान शाखा मेट्रोलॉजी के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। विज्ञान, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, मौसम, अंतरिक्ष अनुसंधान और रोजमर्रा के जीवन में सही माप का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। 20 मई 1875 को मेटर कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि में कई देशों ने मिलकर ये तय किया कि पूरी दुनिया में माप की एक समान प्रणाली अपनाई जाएगी। इस समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माप की इकाइयों को मानकीकृत किया गया। बाद में इसे आधुनिक SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विकसित हुई। मेट्रोलॉजी का अर्थ है माप का विज्ञान। यह विज्ञान इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी वस्तु, दूरी, समय, तापमान, वजन, बिजली की माप सही और एक जैसी हो। उदाहरण के लिए किलो में वजन मापना, मीटर में दूरी मापना, थर्मामीटर से तापमान मापना और घड़ी से समय मापना। अगर माप सही ना हो तो व्यापार, चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोगों में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाली मानक इकाइयों को SI यूनिट्स कहा जाता है। अगर दुकानदार गलत वजन का उपयोग करे तो ग्राहक को नुकसान तो होगा। सही माप व्यापार में ईमानदारी लाती है ना श्रोताओं। वैज्ञानिक प्रयोगों में बहुत सूक्ष्म माप की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष और चिकित्सा अनुसंधान में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दवाइयों की सही मात्रा और मेडिकल उपकरणों की सटीकता जीवन बचाने में मददगार करती है। कार, मोबाइल, कंप्यूटर और मशीनें सही माप पर आधारित होती हैं। तापमान, वर्षा और प्रदूषण की माप पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। भारत में माप और तौल की व्यवस्था को सरकार नियंत्रित करती है। भारत की राष्ट्रीय मानक प्रयोगशाला है जो देश के लिए माप के मानक निर्धारित करती है। हर वर्ष विश्व माप विज्ञान दिवस की एक विशेष थीम होती है। इसका उद्देश्य नई वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिक मापन प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शोर फिल्म का ये गाना। महेंद्र कपूर, मन्ना डे, श्यामा चित्तर और साथियों की आवाज़ों में इस गीत को लिखा था इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत से सजाया था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और कार्यक्रम में अब हमारे बुजुर्ग श्रोताओं के सेहत से जुड़ी कुछ खास बातें। श्रोताओं, अभी देश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के करीब चल रहा है। ये मौसम बुजुर्गों की पाचन तंत्र के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। गर्मी में होने वाला डिहाइड्रेशन न केवल कब्ज बढ़ाता है बल्कि आंतों की पुरानी बीमारियों को भी ट्रिगर कर सकता है। बुजुर्गों के लिए राहत की बात यह है कि गर्मी में पाचन तंत्र के लिए इलाज से ज्यादा असरदार रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें होती हैं, जैसे भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और पर्याप्त पानी पिए, दही, छाछ, फल, ओट्स जैसे आहार आंतों के लिए नेचुरल प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं, पेट को गर्मी से बचाते हैं ये सब आहार। गर्मी में प्यास का इंतज़ार बिल्कुल भी ना कीजिए कि कब मुझे प्यास लगेगी तब मैं पानी पीऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। नारियल पानी, छाछ नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बचाते हैं। कब्ज से बचने के लिए फाइबर ज़रूरी है, लेकिन अगर आंतों में सूजन है तो कच्ची सलाद के बजाय उबली हुई सब्जियाँ खाएँ ताकि आंतों पर जोर बिल्कुल भी ना पड़े। एक बार में भोजन करने के बजाय दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा खाएं, इससे पाचन तंत्र पर लोड कम और एसिडिटी नहीं होती है। बुजुर्ग अक्सर दर्द निवारक गोलियां दवाएं ज़्यादा लेते हैं, ये दवाइयां आंतों की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना ये सब दवाइयां आप बिल्कुल भी न लें, दर्द निवारक दवाइयां। और गर्मी से बचकर रोज़ाना 20 से 30 मिनट की हल्की सैर करें, इससे आंतें गतिशील बनी रहती हैं और अगर मल त्यागने में अचानक बदलाव आए तो उसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, डॉक्टर की सलाह लें, निगरानी में रहे डॉक्टर की। तो हमारे बुज़ुर्ग अगर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो इन कुछ नियमों का पालन आप अवश्य कर सकते हैं। और आपके लिए अब एक प्यारा सा गाना।

और अब चलते चलते मौसम की जानकारी। आंशिक रूप से बादल आज छाए रहेंगे, दिन में उमस भरी रहेगी, उमस भरी गर्मी रहेगी और गर्मी परेशान करेगी आज दिन भर। तापमान में बदलाव की संभावना फिलहाल अभी तो नहीं है। आज के अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

0: श्रोताओं, समय अभाव के कारण हम ये गाना आपको पूरा नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। आप सुन रहे थे जमीन आसमान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे अनजान, संगीतकार राहुल देव बर्मन। और इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद दिन के 12:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट

श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 12:05 रहे हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे बस थोड़ी देर में।
1: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार, बल्कि प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो एक यात्रा है। खुशी के लिए इच्छाएं पूरी होने या मन का मिलने से ज्यादा जरूरी है इत्मीनान। इत्मीनान उन चीजों, उन लम्हों के प्रति जो आपके पास है और आपके साथ मौजूद है। जो हासिल है उसी में खुशियों की तलाश करें। खुशी शुक्रिया अदा करने में भी है तो दूसरों की तकलीफों को समझकर थोड़ा साझा करने में भी खुशी है। खुशी सुख दुख की समानुभूति है तो बेहतरी की दिशा में निरंतर चलने की सतत यात्रा भी।

श्रोताओं, खुशी का प्रारंभिक रास्ता सुख से ही होकर गुजरता है। सुख, खुशी, हंसी, आनंद, मज़ा, इन सब का कोई विकल्प नहीं है। आप कितनी भी सैद्धांतिक बातें कर ले, पर हकीकत यह है कि आप न तो इच्छाओं को पनपने से रोक सकते हैं और न ही सपनों के मर जाने से, खुद को दुखी होने से। आप परीक्षा में फेल होते हैं तो निश्चित ही निराशी होंगे, इसका कोई क्षणिक विकल्प नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि दुखों से दुखी नहीं होना चाहिए। जब कोई अपेक्षा के विपरीत स्थिति बनती है तो यकीनन दुखी होगा, आप इससे भाग नहीं सकते।

है एक लगन है, ठीक वैसे ही दुखी रहना भी। आप बहुत अमीर होकर भी दुख का कारण खोज सकते हैं या दुखी रह सकते हैं, और आप गरीब होकर भी खुश रह सकते हैं। आपाधापी भरे इस जीवन में सुख को तलाशना होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सुख कहाँ मिलेगा, तो मेरा जवाब ये होगा कि बस आपके इर्द गिर्द।

श्रोताओं, सुख और दुख। सुख मतलब इच्छाओं का पूरा हो जाना, सपनों का सच हो जाना, ख्वाबों का हकीकत में बदल जाना, सफल हो जाना, लक्ष्य को पा लेना। और दुख ठीक उल्टा, इच्छाओं का पूरा न होना, सपनों का सच न होना, ख्वाबों का हकीकत में न बदलना, असफल हो जाना और अपने लक्ष्य से भटक जाना। सुख और दुख को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। श्रोताओं, सुख की सबसे सहज परिभाषा है कि आप निजी जीवन में हर वो काम करें जो आपको पसंद हो। दरअसल हमने खुद को संकुचित करते हुए ये मान लिया है कि सुख मृग मरीची का जैसे कोई चीज है। आप अपनी पसंद का काम करेंगे तो तनावग्रस्त नहीं होंगे, अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, आपको मन में दिल में बहुत सुकून मिलेगा।

श्याम भावगीत के आज के इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी बर्फी, चलते चलते, कॉकटेल और मेरी कॉम। इन गीतों के लिए आवाजें थी श्रेया घोषाल, निखिल पॉल जॉर्ज, सुखविंदर सिंह, नीरज श्रीधर, कविता सेठ और अरिजीत सिंह की। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, बाबू मान, इरशाद कामिल और संदीप सिंह। संगीत से सजाया था प्रीतम, आदेश श्रीवास्तव और शिवम ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत अब संपन्न हुआ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 1:20 पर और 2:30 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय है 3:00। सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गुलाम अली की आवाज में चंद गजलें। समय होगा 3:30। दिन के 3:45 पर आदिवासी लोकगीत कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे कुरमाली लोकगीत। कलाकार होंगे अंजलि महतो।

दिन के 12:30 हुए हैं। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन।

आप सुन रहे थे राग भीम पलासी में उस्ताद अली अकबर खान का सरुद वादन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अपने रांची केंद्र से रिले कर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल।

0: है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe economic corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart, Ahn Kyu-bak, in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defence industry and strategic cooperation, with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defence cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defence College of India, the Korea National Defence University and the UN Peacekeeping Corporation. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defence capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle-launched precision-guided missile, marking a significant achievement for the country's defence sector. The trials were conducted in both air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. The missile was developed by Research Centre Imarat, Hyderabad, in collaboration with other DRDO laboratories. Developed entirely within the country, the project highlights the growing strength of India's domestic defence manufacturing ecosystem.

0: रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सामाजिक कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल, राज्य को मिलेगी 85% अतिरिक्त बिजली। और हजारीबाग में ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट शुरू, देश विदेश के 272 खिलाड़ी बिसात पर आजमा रहे हैं चालें। और अब समाचार विस्तार से। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए यात्री अनुकूल कदमों की शुरुआत की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट पर नवनिर्मित बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हो रही इन पहलों का उद्देश्य एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना है।
1: हमारे प्रयास ये है केंद्र सरकार के कि हर राज्य में जो राजधानी में जो एयरपोर्ट है वो सबसे बढ़िया रहे, सारे बाकी राज्यों से हो या बाकी बड़े शहरों से जो वो सबसे कनेक्टेड रहे, तो उसके ऊपर जरूर हमारा प्रयास भी रहेगा और हमारे तरह से सपोर्ट भी रहेगा। यात्रियों में एक अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छी मांग भी रही है ये उड़ान यात्री कैफे के तहत। उड़ान यात्री कैफे का मकसद ये है कि कम दाम में एयरपोर्ट पे भी खान पान की व्यवस्था हो।
0: राज्य में सामने आए करोड़ों रुपए के ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन विभागों में फर्जी तरीके से सरकारी राशि की निकासी हुई है वहां से डीडीओ को तुरंत हटाया जाए। श्री किशोर ने इस सिलसिले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झामुमो महासचिव मिथिलेश ठाकुर द्वारा भारत का खंडित नक्शा जारी करने पर हमला बोला है। मरांडी ने इसे देश की अखंडता पर प्रहार बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सार्वजनिक माफी की भी मांग की। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कल रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। रांची में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 में श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य राज्य में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी गतिविधियों को और प्रभावी बनाना है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों को बेहतर गति मिल सके। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो प्रखंड में सिंगार सराय से कैरो समेत 3 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि मांडर विधानसभा में विकास की यह यात्रा जारी रहेगी और सभी वायदे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदाचार को एक दीपक बताते हुए कहा है कि यह पूरे समाज को प्रकाशित करता है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोग इसी आदर्श के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने आचरण को संतुलित बनाने के लिए शास्त्रों के मापदंडों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट IR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट IR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहरे स्टोरी के साथ आपसी बैठक की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ

0: भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान लिज्जत पापड़ उद्योग की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का आंदोलन बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि विकेंद्रित उत्पादन का यह मॉडल महिलाओं को घर बैठे आत्मनिर्भर बनाता है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद में अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए उपायुक्त और एसएसपी ने 112 पेट्रोलिंग बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सायरन, ब्लिंकर और जीपीएस से लैस इन बाइकों की सीधी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी, जिससे शहर के तंग इलाकों में भी पुलिस रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा।
2: धनबाद पुलिस के सभी थानों को 45 स्टेट ऑफ दी नई बाइक जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है वो मुहैया कराया गया है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है। जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं जहां हमारे फोर व्हीलर नहीं जा पाते हैं और रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़िया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 75,157 जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रुपये प्रति किलो है। थाईलैंड में आयोजित थर्ड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की युवा निशानेबाज देवासी हेमरम को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में सम्मानित किया। उन्होंने देवासी को आधुनिक शूटिंग किट देने की घोषणा की है।
3: बच्ची एक होनहार है, चाहती है आगे बढ़ना, तो हमने इनसे कहा है कि तुम इतना चिंता मत करो, वो टोटल लिस्ट हमको बना करके दे दो, जहाँ कहीं से भी होगा जैसे भी होगा हम उस सारे शूटिंग की जो भी सामग्री होगी वो व्यवस्था कर देंगे।
0: हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में चौथी ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस मुकाबले में विदेश सहित देश के 13 राज्यों से लगभग 272 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जहां उनके बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया नई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ, कहा यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना सरकार की प्राथमिकता। ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कड़ा रुख, जिन विभागों में हुई फर्जी निकासी वहां से डीडीओ को हटाने के निर्देश। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सामाजिक कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल, राज्य को मिलेगी 85% अतिरिक्त बिजली। और हजारीबाग में ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट शुरू, देश विदेश के 272 खिलाड़ी बिसात पर आजमा रहे हैं चालें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे?
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
5: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
7: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।

आप सुन रहे थे कामचोर फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा था इंदेवर ने और संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने।

रवि के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे हसन कमाल का लिखा ये गाना, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था निकाह। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दिन के 1:35 हुए हैं।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हमारे श्रोता भी सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का ये प्यारा सा गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने।

प्रेम कहानी, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हमराही, इसी फिल्म का गाना श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम की आवाज़ों में गीत लिखा था हजरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं, बने रहिए FM 102.4 MHz पर।
1: अरे हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: Akashvani at 90.
1: SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों ने सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुन्दर का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वनुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
2: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
3: अंतराल के बाद फिल्म संगीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में चंद्रशेखर का लिखा ये गाना। फिल्म का नाम था चा चा चा। और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से आप ले सकते हैं श्रोताओं, दिन के 2:30 पर। आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 2:00 मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन। तो अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।
1: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

प्यार की राहों में तेरे साथ चलूं, तेरी बाहों में मेरी जिंदगी बिताऊं, तेरी नजरों में मोहब्बत की चमक है, तेरे साथ होकर हर गम को भूल जाऊं।

चेहरे पर हंसी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पर हंसी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने आप पर गुरूर आ जाता है।

दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं, दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हो कुछ रोज़ में भर जाते हैं।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी स्वामी, तरकीब, सरफरोश और बाजार। इन गीतों के लिए आवाजें थी किशोर कुमार, जगजीत सिंह, अलका याग्निक और भूपिंदर सिंह की। गीतकार थे अमित खन्ना, निदा फाजली और बशर नवाज। संगीत से सजाया था राजेश रोशन, आदेश श्रीवास्तव, जतिन ललित और खयाम ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

इस समय आपने ट्यून किया है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारी इसी सभा में दिन के 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंद गजलें। फनकार होंगे।

سلام علي. दिन के दिन वजह आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 2:55 आ जाते हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही है। राज्यपाल ने युवाओं को तकनीक आधारित कौशल से जोड़ने और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मार्गदर्शन और अवसर की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से दक्ष युवा भविष्य में केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में कहा कि मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण दुनिया की स्थिति सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में पेट्रोलियम समेत अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को राजनीतिक रूप देना उचित नहीं है। सभी देश हित में प्रधानमंत्री की अपील का पालन कर रहे हैं। श्री सेठ ने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में लिए गए निर्णयों के साथ खड़ा है।
1: दुनिया की स्थिति है किसी से छुपाने, भारत में तो तेल क्यों है नहीं, तेल के कोई तो वही है। क्रूड ऑयल का दाम आसमान छू रहा है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल भारत। मैं भी 10 दिनों से स्कूटी में चल रहा हूँ, शहर में बाहर जाता हूँ तो एक गाड़ी में जाता हूँ, तो जो भी एक एक लीटर दो दो लीटर भी पेट्रोल डीजल बचा है, देश का पैसा बच रहा है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 18 मई से 25 मई तक चलाए जा रहे जनजातीय गरिमा उत्सव जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत आज गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेतरडिप्पा गांव का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर गांव में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। ग्रामीणों ने पेयजल और बिजली की समस्या प्रमुखता से उठाई, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पतरातु सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद कार्यालय में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है और कर्मी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। अक्सर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त की कमी को लेकर मरीजों के परिजन संपर्क करते हैं। ऐसे में जिला परिषद अस्पताल प्रबंध के सहयोग से जरूरतमंदों तक समय पर रक्त पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
2: जिला परिषद में पहली बार ब्लड कैंप लगाया गया है। हर 15 डेज में थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो इन बच्चों का जन्म से ही इनकी जर्नी बहुत मुश्किल होती है। और अगर हम लोग कैंप नहीं लगाएंगे, हम लोग खुद ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, तो अस्पताल में ब्लड आएगा कहाँ से, और इन बच्चों की मुश्किलें कम कैसी होंगी। और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें।
0: रांची जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 6 और 7 जून को रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिला, अंडर 11 से अंडर 19 और मास्टर्स वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। संघ ने सभी संबंधित खिलाड़ियों, संस्थानों और इकाइयों से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिन के ठीक 3 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते

0: ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
0: जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am. How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
5: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
7: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
8: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
5: Eco. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Ma'am, parrot.
3: Oh yes, parrot is a mimic bird. But children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing? Okay, I'll give you a clue. It calls

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो दीदी
1: दीदी
0: राजू स्कूल से आ गए तुम?
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या?
1: अच्छा अब इधर आओ,
0: ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए दादाजी।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
2: राजू कहाँ चला गया?
3: रात को तो यहीं सोया था।
2: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
2: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
4: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
5: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
4: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
5: दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
6: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
5: हाँ दीदी, मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
4: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

श्रोताओं, हमारी इसी सभा में दिन के 3:45 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोकगीत। इस कार्यक्रम के तहत कुरमाली लोकगीत कलाकार होंगी अंजलि महतो।

शाम 4:02 का समय होगा, झलकी का। झलकी आज आप सुनेंगे एक पत्र अंग्रेजी में और बुफे सिस्टम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय होगा 4:30।

आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से मंडे 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:45 हुए हैं। लोग आदिवासी लोकगीत के कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इस कार्यक्रम को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को कृष्णा कावेरी का प्यार भरा जोहार। श्रोताओं लीजिए सुनिए कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं अंजलि महतो।

0: अभी आप सुन रहे थे कुर्माली लोकगीत, कलाकार थी अंजलि महतो। श्रोता, इसके साथ ही झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 18 मई से 25 मई तक चलाए जा रहे जनजातीय गरिमा उत्सव जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत आज गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेतरडिप्पा गांव का दौरा किया। उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर गाँव में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। राज्य के पतरातूत सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जाँच का निर्देश दिया गया है। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। रांची जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 6 और 7 जून को रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिला अंडर 11 से अंडर 19 और मास्टर्स वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। शाम के 4:02 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए झलकी, एक पत्र अंग्रेजी में। लेखक हैं चंद्रशेखर पांडे।

0: आइए आइए, मास्टर कसीटालाल जी आइए।
1: नमस्कार।
0: अरे देवीलाल देख, इधर आ, तेरे मास्टर जी आ गए।
2: मैं तैयार बैठा हूँ बापू।
0: जाइए मास्टर जी, देव कमरे में है, आप ही के इंतजार में। कितनी ललक है मेरे बेटे को अंग्रेजी पढ़ने।
1: वाह वाह,
0: आपके आने से पहले ही तैयार होकर बैठ जाता है,
1: ये बड़ी अच्छी आदत है।
0: लेकिन मास्टर जी
1: जी,
0: इसकी ये अच्छी आदत पता नहीं उस वक्त कहाँ चली जाती है जब संस्कृत के मास्टर आते हैं, तब बदमाश खोजने से भी नहीं मिलता।
1: ये तो ठीक नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा।
0: ओह, आप कौन है?
2: पोस्टमैन।
0: लाओ भाई बैठ, ये एक ही चिट्ठी है।
2: जी हाँ।
3: अजी दरवाजे की घंटी दो बार बोली थी। अजी मैं पूछती हूँ कौन कौन आया।
0: पहली घंटी में मास्टर जी आए जो देवू के कमरे में चले गए, और दूसरी घंटी में डाकिया एक चिट्ठी दे गया।
3: चिट्ठी?
0: हाँ।
3: अजी मेरे मायके से आई होगी, लाओ दो दो।
0: ये चिट्ठी तुम्हारे मायके से नहीं हो सकती, क्योंकि ये लिफाफा है।
3: अच्छा।
0: और तुम्हारे घर से हमेशा पोस्ट कार्ड ही आते हैं।
3: इसका कारण पैसे की कंजूसी नहीं है जी, तुम्हारी तरह वो कपड़े के दलाल तो है नहीं, कपड़े के व्यापारी है। लगता है इस बार कोई खास बात है तभी लिफाफा भेजा है।
0: तो भी ये तुम्हारे घर की चिट्ठी नहीं हो सकती।
3: क्यों जी?
0: क्योंकि पता अंग्रेजी में लिखा है, और तुम्हारे घर का कोई भी आदमी अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है।
3: तो इसमें ताना मारने की क्या बात है जी, तुम भी तो अंग्रेजी नहीं जानते। मेरा देबू पढ़ रहा है, वो सारी कसर पूरी कर देगा, फिर मेरा असली घर भी तो यही है।
0: ये बात तुमने लाख रुपए की कही।
3: तो लिफाफा दो, मैं खोलूंगी।
0: लिफाफा मेरा खोलना ही ठीक रहेगा? याद है पिछली बार तुमने लिफाफे के साथ चिट्ठी भी फाड़ डाली थी।

0: सिर्फ पता ही नहीं, पूरी की पूरी चिट्ठी अंग्रेजी में है।
1: मास्टर जी घर में ही है, बुलवाकर पढ़ा लो।
0: पता नहीं किसने भेजी है, क्या लिखा है। देखो, बिना जाने बूझे पराए आदमी से घर की चिट्ठी नहीं पढ़ानी चाहिए।
1: हाँ।
0: इतने दिन हो गए अपने देबू को अंग्रेजी पढ़ते हुए, क्या एक पत्र भी नहीं पढ़ सकता वो?
1: तो उसी से पढ़वा लीजिए।
0: बेटा देवीलाल, बेटा जरा यहाँ तो आना।
2: पढ़ने भी देंगे या नहीं बोलिए, क्या काम है?
0: बेटा देखो, ये पत्र आया है, अंग्रेजी में लिखा है, तू पढ़ सकता है? कोशिश करके देख जरा।
2: लाइए। मैं पढ़ तो सकता हूँ बापू, मगर ये पत्र मुझे नहीं पढ़ना चाहिए।
0: क्यों?
2: मैं नहीं पढ़ूंगा।
0: मगर इसमें ऐसी क्या बात लिखी जो तुझे नहीं पढ़नी चाहिए?
2: अब आपको कैसे समझाऊं, किसी ने आपके लिए ये प्रेम पत्र भेजा है।
0: अबे जा, मुझे प्रेम पत्र कौन भेजेगा?
2: ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिरनामा साफ बताता है कि ये प्रेम पत्र है।
0: क्या लिखा है सिरनामे में?
2: माई डियर, फिर आपका नाम है, मतलब मेरे प्यारे चंपा लाल जी, ऐसा ही तो होता है प्रेम पत्र।
3: अच्छा जी, तो आप प्रेम पत्र भी आने लगे, तभी मास्टर जी से पढ़ाने में ही चक रहे थे।
0: तुम गलत सलत मत समझो जी।
3: हाँ
0: हाँ। मैं कहता हूँ ये प्रेम पत्र कतई नहीं है। देबू, पहले ये बता पत्र भेजा किसने है?
2: अभी बताता हूँ। GURDN गार्डन। हाँ, भेजने वाला है गार्डन।
0: क्या गार्डन? अबे बुद्धू, गार्डन माने तो बागीचा होता है, इतनी अंग्रेजी तो मैं भी जानता हूँ, बागीचा मुझे पत्र कैसे भेजेगा? लेकिन ठहर ठहर ठहर, मैं रोज सवेरे बागीचे में घूमने जाता हूँ ना, वहाँ और भी बहुत से लोग आते हैं, कुछ से मेरी दोस्ती भी हो गई है, लगता है उन्हीं में से किसी ने पत्र भेजा होगा और अपना नाम ना लिख के बागीचा लिख दिया है।
3: देबू जरा देख, बगीचे के पहले क्या लिखा है, पत्र भेजने वाले ने अपना संबंध क्या बताया है?
2: योर फ्रेंड। हाँ माँ, लिखा है आपका मित्र।
3: बेटा देबू जरा ठीक से देख ले, मित्र लिखा है या मित्रानी?
2: अम्मा, अंग्रेजी में मित्र और मित्रानी के लिए एक ही शब्द होता है, फ्रेंड। फ्रेंड माने मित्र या मित्रानी।
3: तो जरूर ये मित्रानी है, 7 दिन से सर्दी से ये बगीचे में नहीं गए, तो मित्रानी जी को हैरानी हुई होगी, बेचैनी में बेचारी ने अंग्रेजी में पत्र लिख मारा।
0: जो मुँह में आता है अनाप शनाप बकी चली जाती है, ये भी ख्याल नहीं करती कि पास में बेटा खड़ा है।
3: जब तुमने मित्रानी बनाते वक्त कुछ ख्याल नहीं किया, तब मैं चिट्ठी सुनते वक्त क्या ख्याल करूं? हाँ देबू, ये तो मालूम हो गया कि चिट्ठी बागीचे की किसी मित्रानी ने भेजी है, अब ये बता कि चिट्ठी में लिखा क्या है?
2: लिखा है मुझे दुख है।
3: दुख तो होगा ही, 7 दिन से भेंट जो नहीं हुई।
2: अम्मा तुम बीच में बोलोगी तो मैं भूल जाऊंगा।
3: अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगी, तू आगे पढ़।
2: आई कुड नॉट सेंड लेटर। हाँ, मैं नहीं भेज सका पत्र।
3: भेज सका नहीं, भेज सकी, सकी बोल।
2: अच्छा, ये कौन सा शब्द है? ई ए आर, ईयर। ईयर माने कान, फिर है एल आई ए आर। हाँ, लायर। लायर माने झूठा आदमी। अम्मा वो लिखता है,
3: एक झापड़ मारूंगी देबू।
2: हाँ अम्मा, वो लिखती है कि मुझे दुख है, मैं पत्र कान और झूठा आदमी नहीं भेज सकी।
0: वाह वाह वाह, क्या खूब, जैसा पत्र पढ़ने वाला वैसा सुनने वाला।
3: हाँ जी।
0: जिस गधे ने कान और झूठा आदमी मंगाया था, सब गड़बड़ लगता है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया।
3: तुम समझ कर भी ना समझोगे तो कोई कैसे समझाए, मगर मैं सब समझ गई।
0: अच्छा, क्या समझा तुमने?
3: इसमें समझने को है ही क्या, बिल्कुल साफ तो है, वो तुम्हारी मित्रानी मेरे कान भरने के लिए किसी झूठे आदमी को पत्र के साथ मेरे पास भेजने वाली थी, लेकिन लगता है वो फरेबी आदमी पहले हामी भर के बाद में आने से मुकर गया होगा। तो लाचार होकर महारानी ने डाक से चिट्ठी भेज दी।
0: बलिहारी तुम्हारी समझ की, वो झूठा आदमी तुम्हारा कान क्या भरता?
3: इसे तुम नहीं समझोगे, औरत के मन की औरत ही समझ सकती है।
2: आगे लिखा है, मुझे आशा है तुम्हारा बेटा। TIVIL। अरे अरे, डेविल माने तो राक्षस होता है।
3: चौंकने की कोई बात नहीं देबू, वो डायन मेरे बेटे को राक्षस न कहेगी तो क्या श्रवण कुमार कहेगी? तू आगे पढ़।
2: ALMUST अलमस्त, BIBDDD। आगे कौन सा अक्षर है समझ में नहीं आता, एकदम घसीट दिया है लिखने वाले ने। बापू, मैं किताब की छपी हुई अंग्रेजी तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन घसीटी अंग्रेजी मैं नहीं पढ़ सकता।
0: मैंने मास्टर घसीटे लाल को खास तौर पर इसलिए रखा था कि वो घसीटी अंग्रेजी भी पढ़ा देंगे।

0: उन्होंने अभी तक तुम्हें घसीटी अंग्रेजी नहीं सिखाई?
1: नहीं, अभी तक नहीं सिखाई।
0: अच्छा अच्छा, मैं उनसे पूछ लूंगा, तू कोशिश कर।
1: ING, तो वो अक्षर डाई हो सकता है, हो जाएगा डाइंग, आगे है विल। समझ गया अम्मा। वो लिखती है, मुझे आशा है कि तुम्हारा राक्षस और अलमस्त बेटा अच्छी तरह मर रहा होगा।
2: अजी सुना तुमने?
0: क्या?
2: वो मेरे बेटे की मौत मना रही है। अभी भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता?
0: मुझे गुस्सा नहीं, हंसी आ रही।
2: ठीक है हंसो हंसो, मगर उसके मनाने से क्या होता है जी। देबू, चिट्ठी खत्म हो गई या कुछ और भी है?
1: एक लाइन और है अम्मा,
2: उसे भी सुना दे।
1: आई विल कम सून, हाँ मैं जल्दी आऊंगी।
2: क्यों नहीं, उसके बाप का घर है ना।
1: रेस्ट इज ओ बना के बिंदी, फिर बी, फिर के बना के बिंदी। रेस्ट माने आराम, हाँ आराम है ओके। अम्मा ये ओके क्या है, मैं नहीं जानता।
2: तू नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं जानती हूँ ना। ये ओके नहीं है देबू, आके है, मतलब मैं आके आराम करूंगी। अच्छी बात है, आने दे चुड़ैल को, ऐसा आराम कराऊंगी कि जिंदगी भर ना भूल पाएगी। वो भी क्या याद करेगी कि उसने सुनंदा के सुहाग पर फंदा डाला था।
0: देखो मैं इतना बड़ा झूठा कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता।
2: हाँ जी,
0: देबू ने जरूर पढ़ने में घोटाला किया है। मैं मास्टर जी को बुलाकर पत्र पढ़वाता हूँ।
2: जरूर पढ़वाइए, मगर ये मत भूलिए कि वो मास्टर हैं। हाँ 10 जगह पढ़ाने जाते होंगे, आपकी नेकनामी का झंडा घर घर फहरा देंगे वो।
0: मुझे इसकी परवाह नहीं, जब मेरी किसी औरत से दोस्ती है ही नहीं तो डरूं क्यों।
2: हाँ जी,
0: आज को आज क्या। मास्टर जी जरा यहाँ आइए।
3: जी अभी आया।
0: मास्टर जी जरा ये अंग्रेजी की चिट्ठी तो पढ़ दीजिए।
3: लाइए लाइए।
0: सबसे पहले ये बताइए कि पत्र भेजने वाला कौन है।
3: पत्र भेजने वाले हैं आपके कोई मित्र जो शायद रेलवे में गार्ड हैं, और उनके नाम का पहला अक्षर है न।
0: रेलवे गार्ड?
3: हाँ।
0: और नाम शुरू होता है न से?
3: जी हाँ जी।
0: अरे हाँ, वही अपना लंगोटिया यार नटवर लाल भाई। मगर मास्टर जी, देबू तो कह रहा था पत्र किसी गार्डन यानी बागीचे ने भेजा।
3: देखिए ना, अगर गार्ड और एन को जरा जल्दी में मिलाकर बोले तो वो गार्डन जैसा ही हो जाता है।
1: हाँ मैं ऐसा ही तो बोला था, बापू बीच में बोल पड़े कि गार्डन माने बगीचा होता है। इतनी अंग्रेजी मैं भी जानता हूँ, तो मैं चुप हो गया।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मास्टर जी आप चिट्ठी पढ़िए।
3: हाँ, गार्ड साहब लिखते हैं, प्रिय चंपा लाल जी नमस्ते, मुझे दुख है कि मैं पत्र जल्दी नहीं भेज सका।
0: देवू ने पढ़ा कि मैं पत्र कान और झूठा आदमी नहीं भेज सका।
3: जी
1: देखिए ना मास्टर जी, ये EAR है, ईयर माने कान, और ये है लायर, लायर माने झूठ बोलने वाला।
3: ये दो शब्द नहीं है देवीलाल, एक शब्द है, शब्द है अर्लियर माने जल्दी, इसको तोड़कर तुमने दो बना दिया।
0: आगे बढ़िए मास्टर जी।
3: हाँ आगे वो लिखते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपका पुत्र देवीलाल बहुत अच्छी तरह होगा।
0: मैंने पढ़ा था कि आपका राक्षस और अलमस्त बेटा अच्छी तरह से मर रहा होगा।
3: अरे वाह, ऐसा पढ़ा क्या देवीलाल ने?
1: मास्टर जी इसको देखिए ना, DEVIL, डेविल, डेविल माने राक्षसी तो होता है।
3: डेविल माने राक्षस जरूर होता है, मगर यहाँ भी तुमने आधे अक्षर ही लिए हैं, ए और एल को छोड़ दिया। उन दोनों को मिलाने से तुम्हारा नाम बनता है देवीलाल, उन्हें तुमने मिला दिया मस्त के साथ।
1: और डी के बाद ये घसीटा हुआ अक्षर मुझे वाई जैसा लगा, बाद में ING होने से डाइंग अर्थात मरने की बात हो गई।
3: नहीं भाई, ये वाई नहीं ओ है, हो गया डूइंग वेल।
0: अच्छा मास्टर जी।
3: हाँ।
0: एक बात तो बताइए, इतने दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए देबू को, लेकिन अभी तक इसे आपने घसीटी अंग्रेजी नहीं सिखाई।
3: जी
0: और तोड़ जोड़ बहुत सिखा दिया।
3: जी तोड़ जोड़ ये मेरा सिखाया हुआ नहीं है सेठ जी, और घसीटी अंग्रेजी सिखाने में मेरा ख्याल है कोई खास उसका तरीका नहीं है।
0: पत्र में कुछ और भी है, उसे भी सुना दीजिए।
3: हाँ जी, लिखा है मैं जल्दी आऊंगा, बाकी सब ठीक ठाक है।
1: रेस्ट माने आराम होता है ना
3: भाई? आराम होता है, और बाकी भी अंदाज से काम लेना चाहिए।
0: अरे भगवान, पत्र में क्या लिखा और क्या पढ़ा समझा गया। अच्छा ये बताइए मास्टर जी,
3: जी
0: इतने दिन हो गए देबू को अंग्रेजी पढ़ते हुए और मेरे हजारों रुपए खर्च हो गए, मगर ये एक पत्र तक नहीं पढ़ सकता।
3: देखिए सेठ जी, अंग्रेजी दूसरे देश की भाषा है, ये जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे ही आएगी।
0: तो मुझे ऐसी भाषा नहीं पढ़ानी जो कछुए की चाल से सीखी जाती हो।
2: हाँ मैं भी देबू को वो भाषा नहीं पढ़ाना चाहती जिसमें मित्र और मित्राणी एक ही तरह लिखा जाता।
0: आप कल से

0: आप बंद कर दीजिए बात।
1: ठीक है, मैं कल से नहीं आऊंगा, मेरी फीस दे दीजिए।
0: आपकी फीस कहाँ भागी जाती है, एक हफ्ते बाद आके ले जाइएगा।
1: देखिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा, आज ही दे देते तो अच्छा था।
0: आप कौन आया?
2: टेलीग्राम।
0: अरे तार आया है। मास्टर जी जाते जाते इसे भी पढ़िए।
1: जी जी लाइए। अरे वाह, बड़ी अच्छी खबर है, सुनकर आप तीनों बहुत खुश हो जाएंगे।
0: तो जल्दी सुनाइए ना।
1: देखिए आप सब खुश हो और मैं उदास मुंह लेकर जाऊं, ये तो अच्छा नहीं लगता। मेरी फीस दे दें तो मैं खबर सुनाऊं।
0: आप बड़े होशियार हो। चलो देना तो है ही, एक हफ्ते बाद ही। आज ये लीजिए अपनी फीस और सुनाइए खुश खबर।
1: शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए, अरे हाँ, तार भी उन्हीं गार्ड नटवरलाल जी का है। लिखते हैं, आज शाम की गाड़ी से सब परिवार पहुंच रहा हूँ, स्टेशन पर मिलिए।
0: मर गए।
1: सेठ जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: आप सुन रहे थे चंद्रशेखर पांडे की लिखी झलकी, एक पत्र अंग्रेजी में। आइए अब सुनते हैं रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की लिखी झलकी, बुफे सिस्टम। निर्देशिका है सरोज भटनागर।

0: अरे अरे भैया थोड़ी सी पूरी देना।
1: अरे अरे अरे भाई पेटू राम जी के लिए और लड्डू लाओ।
2: अभी तो दो लड्डू दिए पेटू राम जी को है।
3: तुम भी कमाल करते हो यार, दो लड्डुओं में पेटू राम जी का क्या भला होगा, ये तो उनके गले में ही अटक गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, चार लड्डू मत देना, देखो मुझसे खाए नहीं जाएंगे।
2: अरे
3: भाई नहीं नहीं नहीं, बस
2: आपके इतने बड़े पेड़ में चार तो क्या 40 लड्डू भी समा जाएंगे।
3: क्या जमाना आ गया।
0: अरे भाई पेटू राम जी को 5-7 पूड़ियां देना, बेचारे मीठा खाते खाते परेशान हो गए होंगे।
2: लीजिए पेटू राम जी गर्मा गर्म पूड़ियां।
3: अरे अरे अरे अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे ये क्या, इतनी सारी पूड़ियां एक साथ कैसे दे दी, मैं कैसे खाऊंगा इनको।
0: अरे खाइए पेटू राम जी, भला खाने में भी कहीं शर्माया जाता है।
3: देखो हाँ वो बात तो है, देखो अपने शास्त्रों में भी कहा गया है, आहारे व्यवहारे च लज्जा त्यजे रसगुल्ले। भाई बस पेट भर गया, अब कतई जगह नहीं है।
0: बस कितनी भी भर जाए कंडक्टर के लिए तो जगह हो ही जाती है ना। अरे चार रसगुल्ले तो पेट में जमा ही जाएंगे।
3: ये क्या बदतमीजी है, बड़े अजीब हैं आप लोग, चैन से भोजन भी नहीं करने देते। मैंने जो कुछ भी खाया है पेट में ही तो खाया है, कोई मैं बांध कर तो नहीं ले जा रहा।
0: अरे अरे अरे पेटू राम जी आप तो बुरा मान गए,
2: हम लोग तो मजाक कर रहे थे। मजाक
3: नहीं नहीं, इसमें मजाक की क्या बात है, घोर कलयुग आया है, लोगों को खिलाने पिलाने की कतई श्रद्धा नहीं रही है। हरिओम हरिओम हरिओम।

0: पालागन बेटू राम जी,
1: सुखी रहो सुखी रहो। कैसे पधारना हुआ?
0: वो क्या है बेटू राम जी, मेरे बड़े बेटे की शादी हुई है ना।
1: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है।
0: आज

0: शाम को एट होम है।
1: अच्छा,
0: आपको पधारना है।
1: अच्छा, तो मैं होम करवाने किस समय आऊँ?
0: अरे अरे अरे, होम नहीं, ये एट होम है।
1: एट होम? ये एट होम क्या होता है राम भरोसे जी?
0: ये अंग्रेजी भाषा का शब्द
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा, अच्छा,
0: और इसमें लोग घर आकर वर वधु को आशीर्वाद देते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और वहीं पर भोजन करते हैं।
1: भोजन करते हैं?
0: हाँ।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल इस नए फैशन में पता नहीं क्या क्या होने लगा है। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा है।
0: अब क्या है कि जमाने के साथ चलना ही पड़ता है ना पेटू राम जी?
1: वो तो चलना पड़ता है।
0: और एक विशेष बात और है पेटू राम जी।
1: विशेष बात?
0: हाँ, होम में भोजन का प्रबंध भी बुफे सिस्टम से किया है।
1: बुफे सिस्टम क्या है राम भरोसे जी?
0: ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसमें क्या है कि भोजन कराने की एक आधुनिक रीति है।
1: आधुनिक रीति है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या होता है?
0: और इसमें भोजन करने वाला पूरी तरह स्वतंत्र होता है।
1: बहुत अच्छी
0: बात है राम जी। आपके लिए बड़ी बात ऐसी है कि जो मर्जी आए लो और जितना मन चाहे खाओ।
1: बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी रीति है। अब तो बड़ा आनंद आएगा
0: जी। तो फिर आज मेरे घर पधारेंगे आप?
1: बिल्कुल अवश्य पधारूंगा।
0: अवश्य, कृपा कीजिए।
1: अच्छा
0: अच्छा, पालागन पेटू राम जी।
1: सुखी रहो, सुखी रहो। वाह वाह वाह, आज तो बड़ा आनंद है। बरसों बाद बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा, वो भी अपना जी चाहे जितना। वाह वाह वाह वाह,
2: क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कौन आया था?
1: अरे राम भरोसे जी आए थे, उनके बड़े बेटे की शादी थी ना।
2: अच्छा।
1: आज शाम को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दे गए हैं।
2: तो इसमें इतना प्रसन्न होने की क्या बात है? भोजन करने तो आप अक्सर ही जाया करते हो।
1: लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अरे प्रसन्नता की तो बात है, राम भरोसे जी ने भोजन की व्यवस्था बुफे सिस्टम से की है।
2: सिस्टम? अरे ये क्या होता
1: अरे,
2: है?
1: अरे ये तुम नहीं समझोगी, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। इस व्यवस्था में क्या होता है कि भोजन करने वाले को कोई रोक टोक नहीं होती।
2: अरे
1: जो मन पसंद आए लो और जितना जी चाहे खाओ। वाह वाह,
2: ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके तो मजे हो गए।
1: बिल्कुल, बहुत मजे हो गए हैं। अब भोजन करने का आनंद आएगा। मैं तो आज शाम को सीधे राम भरोसे जी के यहाँ भोजन करूँगा। हाँ, एक गिलास पानी और एक नींबू ले आओ।
2: अच्छा,
1: पेट
2: अच्छा।
1: को अच्छी तरह से साफ करके जाऊंगा।
2: अच्छा अच्छा, अभी लाती हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है बुफे सिस्टम की।

0: आइए आइए पधारिए पाल आगन पेटू राम जी।
1: सुखी रहो बड़ा भव्य समारोह है।
0: सब आप लोगों का आशीर्वाद है पेटू राम जी। वो तो सामने मंच है ना,
1: हाँ
0: वहाँ वर वधू बैठे हैं।
1: कितना सुंदर जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है।
0: आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए,
1: हाँ
0: और उसके बाद बगल वाले शामियाने में पधार कर भोजन कीजिए।
1: अच्छा बगल वाले शामियाने में भोजन की व्यवस्था है, मैं तुरंत पहुँचता हूँ वहाँ पर।

वाह वाह, इतने सारे व्यंजन, हलवा, लड्डू, रसगुल्ले, व्यंजनों से आती खुशबू ने भूख की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित कर दिया है। अब मैं जल्दी से भोजन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं बैठने की व्यवस्था तो है ही नहीं, भोजन कैसे करूँ? अरे ये क्या, लोग तो खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। ये एक हाथ में प्लेट पकड़े हुए और दूसरे हाथ से भोजन करते हुए, क्या अपने को भी ऐसे ही भोजन करना पड़ेगा? वो सामने से लोग खाली प्लेटें ला रहे हैं। ऐसा करता हूँ, मैं भी एक खाली प्लेट ले आता हूँ। ये तो ये प्लेट तो मैंने ले ली। अब मैं उन मेजों के पास चलता हूँ जहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। अरे भगवान, ओहो, अरे अरे, यहाँ तो बड़ी धक्के

0: बची हुई है। देखो और देखो भाई संभल के। किसी तरह से मैं कुछ लेने का प्रयास करता हूँ, वो सामने रसगुल्ले पड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, 4-5 रसगुल्ले ले लेता हूँ। अरे अरे अरे ओ ओ हो हो हो अरे अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से 2 रसगुल्ले प्लेट में निकाल पाया था और उसमें से भी 1 धक्का मुक्की में कहीं गिर गया है। ओहो, अब तो 1 ही बचा है। चलो इसे खाकर आगे और लेने का प्रयास करता हूँ। अरे वाह रे बुफे सिस्टम, ये क्या धक्का मुक्की मचा दिए तुमने तो भाई। ओहो, इतनी देर के प्रयास के बाद मात्र 1 रसगुल्ला मिल पाया था। ओह, देखो अब की बार क्या मिल पाता है। वो सामने दाल का हलवा रखा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी पूरी प्लेट हलवे से भर लेता हूँ। हाँ यही करता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे अरे मेरा पे, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। ये कैसी भोजन की व्यवस्था है, हैं? सब कुछ सामने होते हुए भी मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। हर बार मेजों के पास पहुँचने पर कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। अब क्या करूँ क्या करूँ मैं? क्या बिना भोजन किए ही घर चलूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं होगा। सारे दिन भूखा बैठा हुआ शाम का इंतजार करता रहा और अब सामने भोजन होते हुए भी उसे बिना किए चला जाऊं। बिना भोजन किए घर पहुंचने पर ये भागवंती भी मेरा उपहास करेगी। आखिर और सब लोग भी तो भोजन कर रहे हैं। भगवान का नाम लेकर मैं पुनः भोजन की मेजों तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। चलो मैं वहीं चलता हूं। ये पूरिया तो ले ली मैंने और मिठाई भी ले ली। ये सब्जी, अरे भाई साहब थोड़ी सब्जी तो देना। बड़ा धन्यवाद है आपका। चलो किसी तरह से पूरी सब्जियां और मिठाइयां तो प्लेट में परोस ली। वो सामने दही बड़े रखे हैं, 2 दही बड़े ले लेता हूँ, भोजन पचाने में ठीक रहेंगे। वो ठीक है। अरे अरे अरे अरे महाशय, आप पीछे क्यों आ रहे हैं? अरे अरे पहले इतना खाते क्यों हो? अरे अरे पीछे बताओ। अरे राम राम राम राम राम राम। अरे गिरा दिया ना। अरे सच्चा नाश हो तुम्हारा। ओहो, अब मैं क्या करूँ? ओहो, अरे अरे देखो भाई, अरे सारी कमर तोड़ दी रे।
1: अरे ये क्या पीटू राम जी, आपने तो भोजन करने की बजाय भोजन से ही स्नान कर लिया।
0: अरे ये क्या बेहूद की है, 1 तो गिरा दिया, ऊपर से हंस रहे हैं। पता नहीं किस अशुभ मुहूर्त में आज भोजन करने के लिए घर से निकला था, सारे कपड़े सत्यानाश हो गए, शरीर की क्या दुर्दशा हो गई है। आए रे बुफे सिस्टम, तेरा सत्यानाश हो। अच्छा राम भरोसे जी, मैं तो चलता हूँ। अरे राम राम राम।
2: जल्दी आओ भाग्यवान, जल्दी आओ।
3: आती हूँ। अरे ये आपकी क्या हालत बन गई? क्या आप कहीं से लड़कर आ रहे हो?
0: हाँ लड़कर आया हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर आया हूँ।
3: लेकिन आप तो भोजन करने गए थे।
0: भोजन करने नहीं, युद्ध करने गया था, युद्ध करने के लिए। अच्छा ये बताओ, घर में खाने को कुछ है मेरे लिए?
3: खाने को? मैंने तो अपने लिए खिचड़ी बनाई थी।
0: खिचड़ी?
3: हाँ, पीकर और बर्तन धोकर अभी फुर्सत पाई है, बचा कर किसके लिए रखती? आप तो राम भरोसे जी के यहाँ भोजन करने जाने को कह गए थे, वो नई रीति से भोजन करवा रहे थे। वो क्या बताया था आपने नाम? वो
0: मतलो उसका नाम, अरे उसका नाम बुफे सिस्टम नहीं, गूंथे सिस्टम होना चाहिए। एक दूसरे से गूंथे हुए धक्का मुक्की, आगे से धक्का पीछे से धक्का, धराशा चूको तो धराशाई। देखो मैं हो गया ना धराशाई, क्या हालत बन गई है मेरी। ओहो, लगता था वहाँ भोजन नहीं युद्ध हो रहा हो। ऐसा करो मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दो।
3: आप तो वहाँ पूरी हलवा और मिठाइयाँ खाने गए थे ना, इन सब के आगे बोला खिचड़ी में आपको क्या स्वाद आएगा।
0: अरे भागवंती, अरे मेरी घर लक्ष्मी, तुम्हारे बनाई हुई हाथ से खिचड़ी, मैं मुझे रसगुल्ले, हलवा, लड्डुओं से भी ज्यादा आनंद आएगा।
3: अच्छा,
0: और क्योंकि भूख की मेरी मेरी जान निकली जा रही है। देखो मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी भोजन करने के लिए नहीं जाऊँगा और इस बुरे सिस्टम में तो कभी नहीं जाऊँगा।
4: आप सुन रहे थे रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की लिखी छलकी बुफे सिस्टम। निर्देशिका थी सरोज भटनागर। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:30 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे थोड़ी देर में।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:31 और 11 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मीरा शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में आपने सुना सड़क फिल्म का ये गीत। गीत के बोल समीर ने लिखे थे और संगीत नदीम श्रवण ने दी थी।

शाबास मिठू। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, नीरज आर्या की आवाज थी। बोल लिखे थे स्वानंद किरकिरे ने और संगीत अमित त्रिवेदी ने बनाई थी। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अपनी दोस्त मीरा के साथ।

राजीव सुदर्शन और परुमा दास गुप्ता की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म चिड़िया खाना का ये गीत। बोल लिखे थे अनिल पांडे ने और संगीत विवेक राजगोपालन ने बनाई थी।

सयोनी फिल्म का ये गीत आपने सुना, सचिव टंडन और सुकृति कक्कड़ की आवाज़ें थी, सोहेल हैदर के बोल और संगीत, रंगून प्रीतम का।

0: अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना साइना फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे कुणाल वर्मा ने और संगीत अमाल मलिक ने दी थी। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त मीरा को विदा। नमस्कार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश।

0: साथ मैं कामिनी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज जमशेदपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले की अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं और केमिस्ट समुदाय ने ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित तेल मिल गली में हुए चर्चित गोलीकांड में रांची पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सोनू यादव को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीते 19 जनवरी को पंडरा इलाके में 55 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से तेज धूप, गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने कल 26 सदस्यीय टीम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।
2: अरे हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आपका इस्तकबाल। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 5:03 हो रहे हैं और आप 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी। और मैं हूं आपका दोस्त साहिल अस्थाना। आज की शाम हम युवाओं से जुड़े मुद्दों के नाम करेंगे और इस सिलसिले में पहला मुद्दा है प्रदूषण। आज अपने चहुं ओर देखने पर जो भी दृष्टिगोचर होता है उसमें मिलावट है। वायु में धुआं, जल में केमिकल, ध्वनि में शोर और मिट्टी में कीटनाशक, प्लास्टिक वगैरह वगैरह। दरअसल पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, जिससे जीवों और जीवाश्मों का नुकसान हो, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मानवता को खर और दूषण जैसे राक्षसों से भी अधिक हानि पहुँचाता है। वायु, जल, थल और ध्वनि प्रदूषण इसके प्रकार हैं। कारखानों से, वाहनों से धुआं निकलता है और आसमान ढक जाता है। प्लास्टिक और कचरा जल और थल को निगल जाते हैं। ध्वनि में शोर की मिलावट से रक्तचाप, अवसाद जैसी भी समस्याएं अब सामान्य हो गई हैं। इस प्रदूषण के दानव को हराने के लिए अति आवश्यक है कि हम पेड़ों की कटाई बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा नए पेड़ लगाएं। पेड़ पौधे कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं और हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। हमें जागरूक नागरिक बनकर प्लास्टिक और ऐसे ही अनेक वस्तु जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है, उनका उपयोग बंद कर देना चाहिए। फास्ट फैशन का दुष्प्रभाव ये है कि हमारे कपड़े हर 6 महीने में कचड़े में तब्दील हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर भी रोकथाम होना चाहिए। हमें ऐसे उत्पादों का अधिक उपयोग करना चाहिए जिनका इस्तेमाल एक से अधिक बार हो सके, यानी सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, जैसे जूट के झोले, खद्दर के कपड़े इत्यादि। स्वच्छता अपनाकर ही प्रदूषण को हराया जा सकता है। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। आइए अब फिल्म पीकू का यह गीत सुनते हैं, जिसके गायक हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल। बोल हैं अनुपम रॉय के और संगीतबद्ध भी उन्होंने ही किया है।

अब इस शानदार गीत के बाद हम वर्तमान के सबसे गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं कि भारत नशा मुक्त कैसे हो सकता है और हम

युवाओं के लिए बेहतर कल का निर्माण आखिर कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम तो युवा ही देश का भविष्य होते हैं और हमारे प्यारे भारत की करीब 30% आबादी युवा है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। नशा हमारे शरीर के साथ साथ हमारे विवेक, विचार शक्ति, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता और मन को भी व्यथित करता है। नशे की चपेट में आकर वर्तमान और भविष्य राख हो जाते हैं। हम सब ने पंजाब में नशे का तांडव तो देखा ही है और उड़ता पंजाब जैसे चलचित्रों में ये रजत पर्दे पर भी दर्शाया गया है। नशे से युवाओं का कल तो बर्बाद होता ही है, उनकी जान पर भी बनाती है। हमें स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी आदतें जैसे व्यायाम, योग, खेल और सैर सपाटे को अपनाना चाहिए। शिक्षा और खेल युवाओं को सही दिशा और मार्ग प्रदान करते हैं। मरोत्तिचल, जो केरल के त्रिशूर जिले का गांव है, वहां सी उन्नीकृष्णन ने शराब की समस्या को हल करने के लिए शतरंज का खेल लोगों को सिखाया और आज हम इस गांव को चेस विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सरकार युवाओं के लिए खेल केंद्र, संध्या संस्थान और अन्य उपयोगी स्किल्स सीखने के साथ साथ युवाओं को नशे से विमुख करवा सकती है। नशे के दलदल को पार करने के लिए परिवार और समाज का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और निकट संबंधियों को नशे में लिप्त व्यक्ति से किनारा करने के बजाय उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उसे मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र और मनोवैज्ञानिकों की मदद लेकर नशे से छुटकारा पाया जा सकता है। हम युवा कले के माध्यम से भी दुष्प्रभावों को उजागर कर जागरूकता फैला सकते हैं। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, कविताएं, चलचित्र जागरूकता फैलाने में कारगर हैं। हम लोगों के मध्य पहुंचने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी सहारा ले सकते हैं। पुलिस और आम जनता को ये निश्चित करना चाहिए कि दुकानदार कोई भी हानिकारक वस्तु 21 बरस से कम के बच्चों को नहीं बेचें। नशा मुक्त भारत से ही देश का विकास होगा, क्योंकि तभी सारी ऊर्जा सुकर्मों के प्रति प्रदत्त हो सकेगी। यह हमारा दृढ़ विश्वास और संकल्प है कि नशा मुक्त युवा ही बेहतर कल का निर्माण करेंगे। आइए अब सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर का यह गीत। आवाज है शेफाली अलवारीस और विशाल डडलानी की, बोल है अन्विता दत्त के, संगीत बद्ध किया है विशाल और शेखर ने।

0: अब इस शानदार गीत के बाद आइए चर्चा करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन पर। आज के डिजिटल युग में शिक्षा के दो प्रमुख माध्यम हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा। कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा तेजी से लोकप्रिय हुई, वहीं पारंपरिक ऑफलाइन शिक्षा का भी महत्व आज कायम है। युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों में क्या बेहतर है और उन्हें किसे अपनाना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुविधा और लचीलापन है। छात्र घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए किसी भी विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। समय की बचत तो होती ही है, साथ ही दुनिया के बड़े शिक्षकों और संस्थानों के कोर्स तक आसानी से पहुंच भी मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगी साबित हो रहा है। रिकॉर्डेड क्लास के कारण छात्र अपनी सुविधा के अनुसार बार बार पढ़ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्चीली भी होती है। ऑनलाइन शिक्षा की कुछ सीमाएं भी हैं। लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने से आँखों और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कई बार इंटरनेट की समस्या, तकनीकी दिक्कतें और घर का माहौल भी पढ़ाई में बाधा बन जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद की कमी के कारण कई छात्र विषय को गहराई से भी नहीं समझ पाते। दूसरी ओर ऑफलाइन शिक्षा पारंपरिक और अधिक प्रभावी मानी जाती है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में छात्रों को शिक्षकों का सीधा मार्गदर्शन मिलता है। कक्षा में चर्चा, समूह कार्य और मित्रों के साथ संवाद से सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। वहीं ऑफलाइन शिक्षा पारंपरिक और अधिक प्रभावी मानी जाती है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में छात्रों को शिक्षकों का सीधा मार्गदर्शन मिलता है। आइए शहर के युवाओं से इस विषय पर राय जानते हैं। आखिर शहर के युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में किसे बेहतर समझते हैं?
1: मैं आशुतोष सिन्हा आदित्यपुर जमशेदपुर से आज के विषय ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था कौन बेहतर पर अपना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था सदियों से प्रचलित एक व्यवस्था है, जहाँ ज्ञान के साथ साथ व्यक्तित्व का निर्माण कर ज्ञान प्राप्तकर्ता को स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाया जाता है। वहीं निस्संदेह ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था ने ज्ञान को सहजता और सुलभता के साथ घर घर तक पहुँचा है, परंतु व्यक्ति में सामूहिकता और सद्गुणों के विकास में कहीं पिछड़ गया है। अतः आज आवश्यकता किसी एक व्यवस्था को श्रेष्ठ साबित करने की नहीं है, बल्कि दोनों

0: के संतुलित समन्वय की है, जिससे ज्ञान के साथ साथ व्यक्तित्व का भी निर्माण हो सके। धन्यवाद।
1: मैं नितेश सिंह और मैं बारीडी का रहने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन की। सबसे पहली बात ऑनलाइन एजुकेशन की। ऑनलाइन पढ़ाई में स्टूडेंट घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ सकता है। इस समय और ट्रैवल दोनों की बचत होती है। रिकॉर्डेड क्लासेस की वजह से लेक्चर को बार बार सुनना और समझ जाया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के टीचर और कोर्सेज तक पहुंचने में आसानी हो गई है, लेकिन कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में रुकावट बन जाते हैं। अब बात करेंगे ऑफलाइन एजुकेशन की। ऑफलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज जाकर सीधे टीचर से सीख सकते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन से कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। क्लासरूम का माहौल डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ग्रुप डिस्कशन और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हालांकि ट्रैवलिंग और फिक्स टाइमिंग कभी कभी स्टूडेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर देती हैं। तो दोस्तों, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों एजुकेशन सिस्टम के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ज़रूरी है कि हम सही बैलेंस के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद।
2: नमस्ते, मेरा नाम निधि मिश्रा है। मैं बालबेरा में रहती हूँ। अगर ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा होता है कि आप कहीं भी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी भी टीचर्स के साथ, विदेश के टीचर के साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। और लेकिन अगर हम बात करें तो इससे अगर आप फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, सोशल मीडिया हैं कि आपका ध्यान भटकता है, वो माहौल नहीं मिल पाता है कि आप पढ़ सकें। लेकिन अगर आप ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में बात करें तो ऑफलाइन एजुकेशन से आप कॉलेज में जाते हैं, आप टाइम के पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर आपको जो टाइम रहता है उस टाइम पे क्लास रहता है तो उससे आप टाइम का महत्व को समझते हैं। वहाँ जाते हैं, दोस्त लोग से मिलते हैं, वो माहौल बनता है। एक कॉलेज लाइफ एक अलग ही दुनिया रहता है। वहाँ पर जाके पढ़ना, टीचर्स के साथ सवाल जवाब करना, तो ऑफलाइन का एक अलग ही महत्व है। इसीलिए मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन एजुकेशन बहुत बढ़िया है। इसमें हमें अनुशासन का पालन करना भी सिखाया जाता है, एक माहौल मिलता है हमें दोस्तों के साथ। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हमारे दोस्त को समझ में आ जाती है तो हम उनसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन एजुकेशन अच्छा है।
3: नमस्कार, मैं मेघा राउत, मैं जमशेदपुर बागबेड़ा थाना निवासी। मेरे हिसाब से ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन अपनी अपनी जगह पे महत्व रखता है, क्योंकि ऑफलाइन आज के डेट में जैसी गर्मी हो रही है, जैसे जितना 42 डिग्री सेल्सियस में बच्चों का बाहर जाना, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, जो छोटे नन्हे बच्चे हैं उनके लिए आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहिए, और उतना ही महत्वपूर्ण हिसाब से करना चाहिए कि टीचर्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। और रहा बात ऑफलाइन एजुकेशन की, तो वो हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत मैटर रखता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मोबाइल के थ्रू बहुत सिर्फ पढ़ाई करते करते क्या होता है, हमारा ध्यान इधर उधर भी चल जाता है, जैसे कि रील्स हुआ। तो दोनों अपने अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है। समय के हिसाब से चीज़ों को बदलना चाहिए, समय के हिसाब से ऑनलाइन भी होना चाहिए, समय के हिसाब से ऑफलाइन भी होना चाहिए, और इक्वली उसी एफर्ट्स के साथ होना चाहिए। थैंक यू।
4: नमस्कार, मेरा नाम आकाश पोद्दार है। मेरे अनुसार छात्रों के भविष्य के लिए ऑफलाइन शिक्षा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने से केवल किताबों का ही ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, बातचीत करने की कला और टीम वर्क जैसी चीजें भी सीखने को मिलती है। शिक्षक से सीधे सवाल पूछने और दोस्तों के साथ चर्चा करने से समझ भी बेहतर होती है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा का भी अपना महत्व है, इससे घर बैठे नई चीजें सीखना आसान हो चुका है और समय की भी बचत होती है। लेकिन लंबे समय तक केवल ऑनलाइन पढ़ाई करने से छात्रों का ध्यान जल्दी भटक सकता है और सामाजिक विकास भी रुक सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि छात्रों के उज्जवल भविष्य

0: के लिए ऑफलाइन शिक्षा ज्यादा प्रभावी है, जबकि ऑनलाइन शिक्षा को एक सहायक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।
1: नमस्कार आप सभी को, मैं प्रीति दत्ता जमशेदपुर से, करीम सिटी कॉलेज की छात्रा। आज की दुनिया में पढ़ाई के दो तरीके से सबसे ज़्यादा चर्चे में हैं, ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी। ऑनलाइन पढ़ाई ने शिक्षा को आसान बना दिया है, अब हम घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स और इंटरनेट की मदद से सीखना पहले से ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है, लेकिन कई बार नेटवर्क की समस्या, ध्यान भटकना और अकेलापन पढ़ाई को प्रभावित भी करती है। वही ऑफलाइन स्टडी यानी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग की पढ़ाई हमें एक अलग अनुभव देती है। क्लासरूम में टीचर से सीधे बातचीत, दोस्तों के साथ डिस्कशन और अनुशासन, ये सब सीखने को और बेहतर बनाते हैं। हालांकि इसमें समय और यात्रा की ज़रूरत होती है। मेरे अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने फ़ायदे और कमियाँ हैं। अगर हम तकनीक और क्लासरूम दोनों को सही संतुलन बनाएं, तो पढ़ाई और भी प्रभावी हो सकती है। अगर मुझसे दोनों में से एक चुनना हो तो मेरे अनुसार ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाई करने से ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहता है, टीचर्स के साथ सवाल पूछने का मौका मिलता है और दोस्तों के साथ डिस्कशन से सीखना आसान हो जाता है। ऑफलाइन पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव भी सिखाती हैं। धन्यवाद।
2: युवाओं के राय से तो यही लगता है कि आज भी ऑफलाइन एजुकेशन का महत्व उतना ही है जितना पहले था। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आईपीएल अपडेट्स की ओर। कल लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का मैच था। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 220 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। फिर राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवर में 225 रन बनाए, 7 विकेट से मुकाबला जीतकर अंक तालिका में चौथी पायदान पर पहुंचे। आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ मैच बने। अब से दो घंटे बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला है। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। वहीं अब बात करते हैं खबरों की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चर्चाओं में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि खतरनाक कुत्ते को मार सकते हैं, कुत्तों के डर के बिना जीना सभी का हक है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ से आदेश दिया गया कि जरूरी हो तो रेबीज से पीड़ित, असाध्य रूप से बीमार और ज्यादा आक्रामक और खतरनाक कुत्तों को दया मृत्यु दी जा सकती है। यह कार्रवाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियमों के तहत पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की जांच और रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान टकराव के बीच मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जमशेदपुर में एक लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 101.65 रुपये वर्तमान में है, वहीं डीजल की कीमत 96.62 रुपये है। बीते शुक्रवार को भी दोनों पेट्रोल उत्पादों के दाम में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ अपने दोस्त साहिल को दीजिए विदा, एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अभी वक्त है हमारे श्रमिक बंधुओं के दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने का, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाइयों को मालती का नमस्कार। श्रमिक श्रोताओं, आधे घंटे के इस कल कारखाने कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें हम अपनी चर्चा से। श्रोताओं, आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। जी हाँ, वही मधुमक्खी जो कीट वर्ग की छोटी सी प्राणी है और अपनी कड़ी मेहनत से तैयार मीठी शहद हम तक पहुँचाती है। हर फूल पर जाना और उसके पराग कण को इकट्ठा करना और प्राकृतिक रूप से शहद यानी मधु का तैयार होना इनकी विशिष्टता को दर्शाता है। यह संघ बनाकर रहती है। प्रत्येक संघ में एक रानी, कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। एक सुव्यवस्थित तरीके से इनका छत्ता होता है जिसमें कई छिद्र होते हैं। इसके वंश एपिस में 7 जातियां और 44 उपजातियां होती हैं। मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को पहचानती है। मधुमक्खियों से प्राप्त शहद प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह न केवल एक मीठा और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी हैं। प्रकृति के अनमोल उपहार शहद का देश में हजारों साल से केवल औषधि के रूप में उपयोग हो रहा है, लेकिन विश्व के कई देशों ने इसमें मौजूद पोषक तत्वों एवं रोग के प्रतिरोधक क्षमता के कारण इसे पूर्ण भोजन के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल, विटामिन, एंजाइम, खनिज आदि होते हैं। यह कभी खराब नहीं होता। शहद में एंटीसेप्टिक और टॉनिक गुण होते हैं। यह अल्सर को कम करता है और हृदय गति को बढ़ाता है। एनीमिया में भी यह काफ़ी तेजी से काम करता है। शहद में अकार्बनिक तत्व होते हैं जो कोशिका पोषण में भूमिका निभाते हैं। यह शरीर के लिए त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। इसमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं और यह बैक्टीरिया और अन्य रोगजनकों के विकास को रोकता है। इसमें कीटाणु रहित करने की क्षमता होती है। सौंदर्य प्रसाधनों एवं दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह शहद प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है जिसमें गुण अनमोल हैं। और आइए अब आपको कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: फिल्म साजन बिना सुहागन का ये गीत था। यशुदास की आवाज थी, शब्द रचना इंदिवर की थी और संगीत था उषा खन्ना का। और आइए श्रोताओं, अब आपको हम सुनवा रहे हैं सुमंत्र मिश्रा की ये वार्ता। विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध हेतु प्रावधान।
1: आज हम कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, उसके रोकथाम, निषेध और निवारण के संबंध में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उत्पीड़न को समझें और फिर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के रोकथाम एवं निषेध के संदर्भ में बात करेंगे। उत्पीड़न का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय द्वारा किया गया नियोजित और हानिकारक दुर्व्यवहार। यदि हम उत्पीड़न के प्रकार को देखें तो इसमें शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक उत्पीड़न आएंगे। जहां तक बात कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का है, तो इस संबंध में आपको बताते चलूं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दिए गए फैसले के आधार पर एक कानून बनाया, जिसे महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिरोध एवं प्रतितोषण कानून का नाम दिया और यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से प्रभाव में आया। इंडियन पेनल कोड की धारा 509 कहती है कि जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विच्छेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, वह भी इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विच्छेप या वस्तु देखी जाए अथवा उस स्त्री की एकांतक अतिक्रमण करेगा, तो किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा, जिसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। वर्ष 1997 में विशाखा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय आया और उसके कई वर्षों बाद राष्ट्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने अपना एक सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया जो धारा 509 के तहत दर्ज मामले के संदर्भ में था। तो चौंकाने वाला मूल्य सामने आया कि सिर्फ इस धारा के अंतर्गत ही पूरे देश में कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के मामले लंबित थे और तब सरकार ने अपनी सूझबूझ से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम लाया, जो कि आज व्यवहार में है। मैं समझता हूँ कि यौन उत्पीड़न के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत जो बातें कही गई है उससे आप यौन उत्पीड़न को समझ गए होंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न 2013 एक्ट में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि प्रत्येक कार्यस्थलों पर, चाहे वह निजी क्षेत्र हो अथवा सरकारी हो, उन पर सार्वजनिक रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए एक शिकायत समिति प्रत्येक नियुक्ता को बनानी होगी, जिस समिति का अध्यक्ष उस प्रतिष्ठान में कार्य करने वाली कोई वरिष्ठ महिला होगी। यदि उस प्रतिष्ठान में कोई वरिष्ठ महिला नहीं है तो वैसे में वरिष्ठ पुरुष को भी रखा जा सकता है। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है, यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। इस कानून में जरूरी नहीं है कि जिस महिला का उत्पीड़न हुआ हो वह वहाँ कार्य करती हो। कार्यस्थल पर कोई भी हो सकता है, जैसे कार्यालय, निजी संस्थान या सरकारी। जिस महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ वह शिकायत कर सकती है। शिकायत करने की समय अवधि घटना को घटे 3 महीने से ज्यादा बीता नहीं होना चाहिए और यदि उस महिला के साथ एक से अधिक हुई है तो आखिरी घटना से 3 महीने के अंदर शिकायत की जा सकती है। यदि शिकायत समिति को यह लगता है कि इस 3 माह के पहले पीड़िता शिकायत करने में असमर्थ थी तो उसकी समय सीमा और अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि पीड़िता शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ है तो उसके रिश्तेदार, सहकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति जिसने पीड़िता की सहमति ली है वह शिकायत कर सकती है। यदि पीड़िता शिकायत करने की मानसिक स्थिति में नहीं है तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचिकित्सक, उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो परिचित हो शिकायत कर सकते हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो, इन सभी

0: यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो समिति आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नियमों के अभाव में इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे लिखित माफी, चेतावनी, वेतन वृद्धि रोकना, परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना अथवा नौकरी से निकाल देना। यदि कोई महिला समिति के समक्ष अपनी समिति दर्ज कराती है और वह शिकायत झूठी साबित होती है तो उस महिला के विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई, जिसमें लिखित माफी, चेतावनी दी जा सकती है, वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, उसे नौकरी से भी निकाली जा सकती है। इस कानून के व्यवहार में आने पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर के साथ साथ निजी घरों में काम करने वाली महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को भी शामिल किया गया, जिससे महिलाएं सुरक्षित हों और एक स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ मानसिकता के साथ काम कर सके। उत्पीड़न के बहुत सारे मामले जो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के आलोक में माननीय न्यायालय में होती है और वर्षों न्याय के लिए लंबित होती है। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आज कोई नया विषय नहीं है, यह तो प्राचीन काल से देखा जा रहा है। विगत 2-3 दशकों की बात करें तो हम पाते हैं कि कोई भी क्षेत्र, सार्वजनिक हो अथवा निजी, सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह बात सही है, लेकिन इस हिस्सेदारी का अनुपात पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो आज भी कम है। आज भी बहुत महिलाएं ही उच्च पद पर आसीन है, और जब कोई महिला उच्च पद पर आसीन नहीं है और उसका नियंत्री पदाधिकारी कोई पुरुष वर्ग है तो ऐसे में यह देखा जाता है कि कभी कभी कोई मानसिक रूप से व्यभिचारी अपने अधीनस्थ महिला कर्मी अथवा कर्मियों पर पद का दुरुपयोग कर अपने उस अधीनस्थ महिला कर्मी को भय दिखाकर अथवा कोई प्रलोभन देकर, जैसे कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाना या उसे पदोन्नति देने की लालच या उस महिला की वेतन बढ़ा दिए जाने के आधार पर उस महिला कर्मी के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटना को अंजाम देने की बात देखी गई है। महिलाएं लोक लज्जा के कारण ऐसी बातों को उजागर नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर घुटती रह जाती है, और कभी कभी यह देखा गया है कि आत्महत्या भी कर लेती हैं। उच्च अधिकारियों के अलावे भी कोई भी पुरुष सहकर्मी जो एक ही हायरार्की में एक साथ काम कर रहा होता है, वह अपने महिला साथी के साथ भले ही यौन उत्पीड़न का उद्देश्य नहीं रखे, लेकिन उसके साथ हंसी मजाक, उसके विरुद्ध ताना कसना या कोई विपरीत टिप्पणी करना, चाहे वह मनोरंजन के लिए ही क्यों ना हो, यह भी उत्पीड़न है। और ऐसा व्यक्ति भी इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित हो सकता है यदि महिला शिकायत करे तो। इस आधार पर हम देखते हैं कि भले ही सरकार ने कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 बना रखा है, लेकिन बहुत कम मामले ही इस अधिनियम के आरोप में दर्ज हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में नियोक्ता का यह कर्तव्य हो जाता है कि समय समय पर महिला कर्मियों के बीच में जागरूकता लाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाए। जो पढ़ी लिखी समझदार महिला नहीं है उसे इस अधिनियम के माध्यम से शिक्षित किया जाए, उसे उसके अधिकारों के विषय में बताया जाए। महिलाएं जागरूक हो जाएंगी तो कतई संभव नहीं है कि उसके साथ कहीं भी किसी तरह का उत्पीड़न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 में महिलाओं को भी समानता का अधिकार प्राप्त है, और यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या उत्पीड़न होता है तो वह एक सजग प्रहरी के रूप में अपने अधिकारों के साथ साथ अपने स्तित्व की भी रक्षा कर सकती है। हमारा समाज भले ही पितृसत्तात्मक हो गया है, लेकिन फिर भी हम नारी शक्तियों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ का तो यह सूत्र वाक्य ही है, यत्र नारी पूजते तत् रमन्ते देवता। कार्यस्थलों में काम करने वाले पुरुष समाज को भी यह समझना होगा कि जो भी महिलाएं कार्यालय अथवा कार्यस्थल पर काम कर रही हैं, वे भी हमारी माँ बहन के समान हैं, और उन्हें भी इज्जत की दृष्टि से देखना चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए, और तभी इस सूत्र की सार्थकता होगी और साथ ही साथ इस अधिनियम की भी, जो कार्यस्थलों पर काम करने वाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में उसके संरक्षण, निवारण और प्रतितोष के संदर्भ में बनाई गई है, की सार्थकता सिद्ध होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली तू, मौत भी तुझसे हारी है। अतः महिलाएं समाज के निर्माण की आधार होती है, उनका सम्मान हमारा कर्तव्य।
1: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध हेतु प्रावधान, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे सुमंत मिश्रा। श्रोताओं, विधवा पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य विधवा महिलाओं

महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मृत्यु हो गई है और वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। भारत में विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें समाज में कई चुनौतियों जैसे कि आर्थिक अभाव, सामाजिक उपेक्षा, शिक्षा की कमी आदि का सामना करना पड़ता है। यह योजना उन महिलाओं को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन दिया जाता है जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर ना हों। साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। शिक्षा और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के लाभ में 18 से 64 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। वैसी महिलाएं जिनके पति नहीं हैं और जिनकी आय 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए महिला को अपने सारे दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण के साथ आवेदन पत्र भरने होते हैं। आवेदन शुल्क 50 रुपये हैं। इस तरह इस योजना के जरिए विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार प्राप्त होंगे जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by V.C. Pramod. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talk with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है मुझे खुशी है

कट फाइव। श्रोताओं, अभी जो आप ये गीत सुनेंगे, इस गीत में कहा गया है कि इस साल एक जामुन के पेड़ में एक ही फल लगा हुआ है और अमड़ा के पेड़ में भी एक ही फल लगा हुआ है। एक जामुन के फल को धंगर ने खा लिया है और एक अमड़ा के फल को धंगरीन ने खाया। ये जामुन और अमड़ा का फल किसके लिए फला था? ये फल तो हम सभी के लिए फला था। तो आइए सुनते हैं थॉमस बाजरा व साथियों की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंडारी लोकगीत। कलाकार थे थॉमस बाजराय एवं साथी। श्रोता, इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: इत्यस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं कोलकाता नाइट राइडर्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मिलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य, निवेशस्य, तन्त्रज्ञानस्य, रक्षायाः, स्वक्षोर्जायाः, सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य, क्षेत्रीयस्य, वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय, जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरम् उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति। अपि च द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा तस्य इटली देशीया समकक्षीया जॉर्जिया मिलोनी इत्युभाभ्यां लिखिते संयुक्त लेखे उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सौहार्दपूर्ण स्नेहात् विशेष सामरिक सहभागित्वेन विकसितः अस्ति, यस्य आधारः स्वातन्त्र्यस्य, लोकतन्त्रस्य, भविष्यस्य कृते संयुक्त दृष्ट्याधारित मूल्येषु च निहितास्ति, उभौ नेतारौ प्रकाशितवन्तः। नेतारौ उक्तवन्तः यत् यदा वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति तदा भारत इटली सहभागित्वं उच्चतम राजनैतिक संस्थागत स्तरेषु नियमित आदान प्रदान द्वारा दर्शितमस्ति। एकविंश्यां शताब्द्यां समृद्धेः, सुरक्षां च राष्ट्राणां नूतनाशयस्य, ऊर्जा परिवर्तनस्य, प्रबन्धस्य, सामरिक सार्वभौमत्वस्य सुदृढीकरणस्य च क्षमतायाः उपरि परस्पर समन्वयं प्रतिबिम्बयति इति उभौ उक्तवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय एकं महत्वपूर्णोपलक्ष्यं साधितम्। यस्मिन् मानवरहितं वायुयानेन प्रक्षेपितं सटीक निर्देशित V3 प्रक्षेपास्त्रस्य अन्तिम विकास परीक्षणानां सफलतया सम्पादितम्। आन्ध्रप्रदेशे कुर्नूलस्य समीपे DRDO परीक्षण परिधि मध्ये परीक्षणं जातम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः DRDO संस्थायाः अभिनन्दनं कृत्वा रक्षाक्षेत्रे स्वावलम्बनार्थं प्राप्तं व्यूहात्मकं सोपानमिति वर्णितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य सियोल नगरे दक्षिण कोरिया देशस्य रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनस्य मन्त्रिणा ली योंग चुल इत्यनेन सह मिलितवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्री सिंहः अवदत् यत् उपवेशने उभौ पक्षौ संयुक्त विकासस्य, संयुक्त उत्पादस्य, संयुक्त निर्यातस्य च मार्गाणां निर्माणार्थं सहभागी प्रयासानां उपयोगाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सः अग्रे अवदत् यत् द्वयोः देशयोः नवान्वेषण व्यवस्थायाः समन्वयार्थं महत्वाकांक्षी काइंड एक्स उपक्रमस्य संभावनायाः उद्घाटनस्य मार्गचित्रस्य विषये अपि विचारः अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आगामि जनगणनायां जातिगणनां कर्तुं केन्द्रस्य निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। उक्तं च यत् अयं विषयः सर्वकारस्य नीतिक्षेत्रस्यान्तर्गतम् आयाति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठेन उक्तं यत् सर्वकारेण तेषां कृते कल्याणकारी उपायान् कल्पयितुम् अनुन्नतवर्गेण सम्बद्धानां जनानां संख्या अवश्यमेव ज्ञातव्या। न्यायपीठेन उक्तं यत् एतादृशं दत्तांशसंग्रहणे किमपि अनुचितं नास्ति तथा च विषयेऽस्मिन् हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरी वर्येण अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रालयस्य हिन्दी परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षा कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते लेखे श्री गडकरी वर्यः अवदत् यत् हिन्दी केवलं भाषा नास्ति, सा तु राष्ट्रस्य एकीकरणस्य प्रबल माध्यमरूपेण कार्यं करोति। केन्द्रीय मन्त्रिणा उक्तं यत् मन्त्रालयस्य अधिकतमं कार्यं हिन्दीभाषायाम् एव भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तुं तस्य प्रयासः अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अस्मिन् सप्ताहे उत्तर पश्चिम भारते तथा मध्य भारते तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थितेः संभावना प्रकटिता अस्ति। IMD इत्यस्यानुसारं आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रांतरे असम, मेघालय, केरलम, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडावार्तायां IPL क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। चूंकि आज बुधवार है, आज सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम घर गृहस्थी।

बहनों, आज बुधवार है और हम उपस्थित हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। हमें आशा है कि घर के कामों में व्यस्त होने के बावजूद भी कार्यक्रम घर गृहस्थी आप सब जरूर सुनती होंगी।

बहनों आइए सबसे पहले आज के मुख्य आकर्षण से आप सभी को अवगत करवा दें। आज भेंटवार्ता में आप सुनेंगी टाटा मोटर हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्रा सरकार से ली गई भेंटवार्ता। विषय होगा गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और उचित देखभाल। साथ ही चर्चा का विषय होगा महिलाओं के कल्याण के लिए रोजगार परक योजनाओं की जानकारी। बहनों अगर समय रहा तो गीत संगीत से भी आप सबका मनोरंजन अवश्य ही करेंगे।

बहरहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सबसे कुछ जरूरी बातचीत कर लेते हैं। बहनों, बच्चों की गर्मी छुट्टी शुरू हो गई है। गर्मी छुट्टी में बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए योगा और हल्के फुल्के व्यायाम या एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत करने की आदत डालें। बच्चों को इनकी अहमियत से परिचय करवाएं। मोबाइल देखने के बजाय सुबह थोड़ी देर योगा और शारीरिक व्यायाम की आदत बच्चों को हेल्दी रखने में मददगार साबित होगा। बहनों, गर्मी की छुट्टी में बच्चों को डायरी लिखना, नई भाषाएं सीखना, घर के छोटे मोटे काम जैसे कपड़े तह करना और भी घर के छोटे मोटे काम सिखाकर बच्चों को आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाने का प्रयास अवश्य करें। ऐसा करने से बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

चलिए बहनों, अब आप सबका इंतजार खत्म हुआ। लीजिए अब सुनिए आज का भेंट वार्ता। विषय है गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और उचित देखभाल। भेंट वार्ताकार हैं टाटा मोटर अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्रा सरकार, और इनसे बातचीत कर रही हैं कृष्णा कावेरी।

0: गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहनों, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिप्रा सरकार, जो टाटा मोटर हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर शिप्रा, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, सभी बहनों को मेरा सहृदय भावपूर्ण अभिनंदन।
0: डॉक्टर, आज हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर, जब शुरुआत में किसी महिला को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है, तो एक तरफ तो घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन साथ ही मन में थोड़ा डर भी लगता है, खासकर जब उनका पहला

0: बच्चा होता है, तो ऐसे में डॉक्टर गर्भवती महिला को किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है?
1: देखा जाए तो महिला जब पहली बार गर्भवती होती है तो उसे अपने पूरे परिवार का ही सहयोग चाहिए होता है। महिलाओं को सर्वप्रथम गर्भ की पुष्टि हेतु पेशाब की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए।
0: जी,
1: जो जिस दिन उसका महीना एक्सपेक्टेड था, मतलब जो तारीख में उसका महीना आना चाहिए था
0: जी,
1: उस दिन भी अगर आप पेशाब की जांच करें तो वो पॉजिटिव आ जाता है
0: जी।
1: इसलिए कम से कम एक सप्ताह हो जाए तो जांच करा लेना अति आवश्यक है। डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना ही अच्छा होता है। पुरानी धारणा है कि 3 महीने होने से ही कुछ इलाज कराना चाहिए, ये अब आउटडेटेड है। तो हम चाहते हैं कि गर्भावस्था के पहले ही डॉक्टर की सलाह ले ली जाए।
0: डॉक्टर, शुरू का 3 महीना प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत नाजुक समय होता है। उस समय उल्टी, वोमिटिंग आदि की समस्या ज्यादा होती है, तो ऐसे में गर्भवती महिला अपना ख्याल किस प्रकार रख सकती है?
1: सच पूछो तो पहले 3 महीना जो कठिनाइयाँ होती हैं वो पूरे 9 महीने में सबसे ज्यादा होती हैं। उस समय किसी को ये विश्वास दिला पाना कि आप 9 महीने पूरी कर पाएंगे भी मुश्किल हो जाता है।
0: डॉक्टर
1: जब उसे बताता है कि बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से जुड़ी अवस्थाएं हैं, उल्टी होने से भी खाना पीना बंद ना करें, जो पसंद है वही खाएं, ये 3 महीने के बाद बहुत हद तक कम हो जाते हैं। घर वालों से यही अनुरोध रहता है कि उसे इच्छा अनुसार खाने दें, जितना चाहे आराम करने दें, समय पर खाने के लिए जोर जरूर दें। धीरे धीरे उसका स्वाद बदलेगा, फिर उसे उच्च प्रोटीन का आहार देना, फल हरी सब्जी खिलाना आरंभ करें।
0: डॉक्टर, हम लोगों की जो भी टॉपिक है इसका यही मेन पौष्टिक चीजें गर्भवती माँ अपने आहार में शामिल करें, तो डॉक्टर ये भी सवाल है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान कैसे रखें और प्रतिदिन अपने खाने की थाली में किन किन पौष्टिक चीजों को शामिल करें ताकि उनका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो?
1: हाँ जरूर, खाने का बहुत ज्यादा महत्व है। खाना उसे अपने लिए ही नहीं, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी खाना होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 गुना खाना खाती है वो महिला
0: जी।
1: तो गर्भवती महिला को सबसे जरूरी है कि वो भूखे ना रहे
0: जी।
1: सबसे ज्यादा जरूरी है थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन हर थोड़ी देर पर खाएं
0: जी।
1: जैसे जनरली खाना प्रेगनेंसी में खाने के बाद खाने की नली में रिफ्लक्स होके आता है, मतलब वापस आता है।
0: अच्छा,
1: अगर ज्यादा अगर भरपेट के खा लेंगे तो तकलीफ होने लगती है
0: जी।
1: क्योंकि खाना नीचे कम जाता है ऊपर भी आता है, तो खाने के साथ पानी भी पीने से खाने की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो मात्रा को कम रहने दें ताकि वो नीचे जाए ऊपर कम आए, जो दिक्कत करेगा नहीं तो। अगर पानी पी लेंगे तो मात्रा कम हो जाएगी और अच्छा फील नहीं होगा, अनपचता लगेगा। थोड़ा थोड़ा हर 4 घंटे पर खाने की कोशिश करेंगे
0: जी।
1: खाने में मिर्च का उपयोग बिल्कुल ना करें। रोटी भात जो हमारा स्टेपल फूड है, जो हमारा सामान्य भोजन है, उसके साथ हरी सब्जियां, हाँ, साग, दाल, राजमा, सोयाबीन, काला चना
0: जी,
1: और एनिमल प्रोटीन जैसे दूध, अंडा, मछली, चिकन, ये सब जरूर लें
0: जी।
1: एनिमल प्रोटीन की गुणवत्ता वेजिटेबल प्रोटीन से काफी अधिक होती है, अतः जो शाकाहारी हैं वो दूध, दही, पनीर को जरूर अपने खाने में इंक्लूड करें, और मांसाहारी दूध के साथ अंडा, मांस, मछली को अपने दैनिक आहार में शामिल करें
0: जी। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल और था कि क्या प्रेग्नेंट लेडी यानी गर्भवती माँ योगा या एक्सरसाइज भी कर सकती हैं?
1: हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये मुझे हर प्रेग्नेंट पेशेंट पूछती है, और उससे ज्यादा भी उनके घर वालों को चिंता होती है कि जल्दी उठती नहीं है, वॉक पे नहीं जाती, कुछ काम नहीं करती, बहुत आराम करती है
0: जी।
1: तो बात सही है कि व्यायाम करना चाहिए, बट कैसा व्यायाम करना चाहिए इस पे बहुत ज्यादा जोर रहना चाहिए। अगर कोई महिला शुरू से व्यायाम करती है, अगर उसे आदत है रोज चलने की, रोज जिम जाने की, रोज दौड़ने की, किसी भी टाइप के व्यायाम की, तो वो कंटिन्यू कर सकती है, मना नहीं है
0: जी।
1: लेकिन उस रफ्तार में करना है कि अब वो हाफे ना। पहले लोग हाफने के लिए अपना पसीना निकालने के लिए व्यायाम करते हैं, प्रेगनेंसी में ये पर्पस नहीं रहता,
0: मैंने कम्फर्ट
1: कंफर्टेबली करना है
0: जी।
1: इतना इस स्पीड में चलना है कि जब आप बात कर रहे हो चलते चलते तो आपकी आवाज में हाफ ना आए
0: जी,
1: मतलब
0: जी।
1: इतना धीरे चलना है, वो भी उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो पहले से एक्सरसाइजेस में हैं।
0: जी
1: जो नया शुरू करना चाहते हैं उनको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं ना करें, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में करना नया उनके लिए हानिकारक ही हो जाता है। रह गया योगासन, मेरे हिसाब से योगासन से अच्छा कोई और व्यायाम नहीं हो सकता।
0: जी
1: जो आप पहले भी नहीं करते हो तब भी शुरू कर सकते हो, गर्भावस्था में भी नए तौर से आप योगासन शुरू कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा लाभकारी प्राणायाम होता है। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप श्वास को लंबा खींचने की और लंबा छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये है कि उससे आपका आंतरिक मन बहुत शांत होता है, आप में बाहरी वातावरण का प्रभाव खराब तरीके से नहीं पड़ता, आप अंदर से स्ट्रांग और शांत होते हो और बच्चे के लिए इतना अच्छा वातावरण बनाते हो कि वो बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है।
0: जी बहुत अच्छा।
1: प्लस बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि आप लंबा ऑक्सीजन छोड़ते हो बच्चे को भी अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। आपको गर्भावस्था में कुछ कुछ पोस्चरल डिफेक्ट होता है, बिकॉज वो इसलिए होता है क्योंकि आपका पेट बड़ा हो रहा होता है, तो आपकी रीढ़ की हड्डियों पे जोर पड़ता है। वो ठीक करने के लिए कुछ कुछ आसन बहुत मददगार होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में उठना बैठना भी मुश्किल होने लगता है। जो लोग कुछ भी नहीं करते उनका चलना भी आपको लगेगा कि तकलीफ देह है। तो इन सब से अगर निदान पाना है तो थोड़ा बहुत योगासन रोज करना चाहिए, रोज बोलो।
0: जी डॉक्टर, मन की शांति और उनको एक बैलेंस के लिए ये योगा और ध्यान बहुत मदद करेगा।
1: हाँ, लेकिन हाँ, कुछ एक आसन ना करें, जैसे कपाल भाति ना करें और पवन मुक्त, जिसमें पैर पे जोर पड़ता है वो आसन, पेट पे जोर पड़ता है वो आसन ना करें, पोजेस रिलेटेड आसन करें।
0: डॉक्टर, एक बहुत ही अहम सवाल है कि ऐसे आज भी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता के अभाव में या कहें कि अंधविश्वास के कारण भी बहुत से घरों में गर्भवती स्त्री का रूटीन चेकअप और पौष्टिक खानपान को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, तो डॉक्टर ऐसी माताओं और बहनों को आप क्या कहना चाहेंगी?
1: हाँ, ये यही मैंने पहले भी, आपके पहले सवाल को भी मैंने ऐसे ही एड्रेस किया था
0: जी,
1: कि डॉक्टर की सलाह जितनी जल्दी हो सके ले, क्योंकि गर्भावस्था में कुछ सामान्य जैसी चीजें जो सामान्य दिखती हैं वो भी खतरनाक हो जाती हैं, और कुछ चीजें जो खतरनाक दिखती हैं वो सामान्य होती, तो ये समझ पाना नॉर्मल जन साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। तो ये हम पे छोड़ दें, जो हम लोग जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, डॉक्टर से सलाह करके ही तसल्ली करें कि ये तकलीफ चिंताजनक है या नहीं। चिंता करना, तो जो भी गर्भवती महिलाएं मेरे पास आती हैं उनको मैं बोलती हूँ कि चिंताएं आप छोड़ दें, चिंता सारी डॉक्टर्स को दे दें। तो चिंता ना करने से जो अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जो बच्चे को एक अच्छा वातावरण आप दे पाते हो, उसमें एक स्वस्थ और आगे की एक समझदार पीढ़ी पैदा होती है।
0: तो गर्भावस्था के दौरान खुश रहे माताएं,
1: खुश रहें, या लेकिन खुश रहने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी और जो खतरनाक हो जाएंगी।
0: जी,
1: जैसे कि हम लोग जो छोटी मोटी चीजों का निदान तो ब्लड टेस्ट से ही कर लेते हैं, थायराइड, थायराइड आपको पता नहीं लगेगा, बट थायराइड की जांच नहीं होने से माँ में खून की कमी, प्रेशर बढ़ना, बच्चे में मानसिक विकास ना हो पाना, बहुत बुरी बुरी चीजों से आपको बचा सकता है सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट। खून की कमी, खून की कमी तो जानलेवा हो सकती है, मरीज को देख के तो बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा कि उसके शरीर में कितना खून की मात्रा है
0: जी,
1: जब तक वो डॉक्टर से ना मिले। सिंपल सा जांच जो हम लोग हर क्लिनिक में करते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, वो बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजों का इंफेक्शन जांच करना, इंफेक्शन को ट्रीट करना, छोटा छोटा चीज है, वो सब अगर हम कर पाते हैं तो प्रीटर्म लेबर रोक पाते हैं, मतलब जब तक बच्चा पूरी तरीके से मच्योर नहीं हो गया हो उसको निकलने ना दिया जाए, अधूरे बच्चे का जन्म ना हो,
0: जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी,
1: हाँ, प्री मच्योर डिलीवरी ना हो, टाइम पे डिलीवरी हो, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत इजी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, अगर आप हर रूटीन चेकअप कराते रहे, जब बुलाया जाए तब मिले तो हो जाएगा।
0: जी डॉक्टर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार

बहनों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आहार के साथ यानी हमारे भोजन में तेल एवं नमक का संतुलित प्रयोग अच्छे स्वास्थ्य का आधार बन सकता है। बहनों भोजन में तेल और नमक का संतुलित उपयोग करने से हमारा पाचन तंत्र बेहतर रहता है, साथ ही रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। भोजन में तेल और नमक संतुलित मात्रा में उपयोग करने से हमारा हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, शरीर में हार्मोनल संतुलन बना रहता है, साथ ही बहुत बहुत सारी गंभीर बीमारियों जैसे थायराइड और मोटापा से बचाने में भी यह अत्यंत मददगार साबित हो सकता है।

महनों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं महिलाओं के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। महनों, भारत सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक निर्भरता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। बहनों, प्रमुख योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट भी शामिल है, जो स्वास्थ्य से लेकर वित्तीय सुरक्षा महिलाओं को प्रदान करता है। बहनों, इसी के साथ इस कार्यक्रम का समय अब संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति।

ग्रामीण महिलाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम घर गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापनों और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक शिक्षा अहम। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान कहा कि सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की रखते हैं बड़ी क्षमता। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र की सीबीआई जांच की मांग। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने पीएमएलए की विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण, अदालत ने दी सशर्त जमानत। और 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 के मद्देनजर रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के लिए ट्रायल 23 मई को। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोम में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बातचीत का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना है। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की।
2: यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही हैं। राज्यपाल ने युवाओं को तकनीक आधारित कौशल से जोड़ने और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेई विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान मुंबई स्थित लिजत पापड़ इंटरनेशनल एम्पावरमेंट सेंटर का दौरा कर उसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन का प्रेरक उदाहरण बताया। कल्पना सोरेन ने जोर दिया कि इस तरह के सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की बड़ी क्षमता रखते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, घास उद्योग जैसे लघु उद्यमों से जोड़ना जरूरी है। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण शहर में जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, जबकि प्लांट वर्षों से बंद पड़ा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई और जनता के पैसे का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया के बिगड़ते भू राजनीतिक हालात को लेकर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, हालांकि फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। रांची दौरे पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन समेत सभी क्षेत्र संभावित प्रभावों का आकलन कर अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर रहे हैं।
3: जिस तरह के वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ एक सिचुएशन बना है फ्यूल के साथ, ये केवल भारत में नहीं बाकी सारे देश में भी इस तरह है, तो उस सिचुएशन को हमें अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें, हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उसके ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सके। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका, आनंद भी हुआ है तो अच्छा लगा हमें।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि गलत सूचनाओं पर तेजी से अंकुश लगाया जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आए अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने आज रांची सिविल कोर्ट स्थित PMLA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं और केमिस्ट समुदाय ने ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंप कर

0: ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। जमशेदपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उलीडी ओपी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।
1: एक व्यक्ति जो संदिग्ध नजर आ रहा था, जो लक्ष्मण नगर छठगांव है उसके पास बैठा था, तो उसको जब गश्ती दल ने उसे पूछताछ की यहाँ क्यों बैठे हो, तो उसके पास में एक चमकती हुई चीज नजर आई, जिसको देखने पर पता लगा कि वो एक देसी पिस्टल है। और पूछताछ पर पता चला कि उसका इस्तेमाल इस्तेमालदारी या फिर धमकी देने में किया जाना था।
0: जामताड़ा के दुलाडी स्थित नगर भवन में आज जिला स्तरीय खरीफ फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने सरकारी स्तर पर उपलब्ध खरीफ फसलों के बीज, उर्वरक का सही मात्रा में उपयोग और असिंचित भूमि पर बेहतर कृषि कार्य कर बेहतर उत्पादन प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी।
2: ये कर्मशाला का आज का मुख्य उद्देश्य इस बार का है कि हमारा सुखाड़ का आसार है। हर एक साइकिल में एक बार सूखा आता है, जैसे इस बार अलनीनो आने का इफेक्ट है। वो अगर 2 वीक लेट मानसून होता है तो क्या करे, 4 वीक लेट मानसून होता है क्या करे, अगस्त के बाद क्या करे, 15 सितंबर के बाद वो अर्ली रबी का कैसे तैयारी करे ताकि उनको कम से कम क्षति और नुकसान हो। और दूसरा है कि उनको तकनीकी जानकारी जो भी कृषि विभाग की है।
0: आकाशवाणी डाल्टनगंज नियंत्रण कक्ष के तकनीशियन श्री मनोज कुमार का कल उनके पैतृक स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक मृत्यु से आकाशवाणी रांची और डाल्टनगंज के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के गठन के लिए जिला तैराकी संघ द्वारा 23 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वीर बुद्ध भगत एक्वेटिक स्टेडियम होटवार के तरणताल में चयन परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यह चयन 1 जून 2026 को जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में होने वाली 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 को देखते हुए किया जा रहा है, जिसमें रांची की बालक बालिका, पुरुष एवं महिला टीमें भाग लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक शिक्षा अहम। गांडई विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान कहा कि सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की रखते हैं बड़ी क्षमता। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र की सीबीआई जांच की मांग। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने पीएमएलए की विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण, अदालत ने दी सशर्त जमानत। और 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 के मद्देनजर रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के लिए ट्रायल 23 मई को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: श्रीनाथ यूनिवर्सिटी आदित्यपुर के योग विभाग और सरायकेला खरसावां जिला योगासन खेल संघ के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता 2026-27 का भव्य आयोजन हुआ। आयोजन समिति के सचिव उदय सिंह देव ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर मिला। उन्होंने कहा कि
2: सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान से

0: जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हुआ और इसमें बहुत सारे प्रतियोगी जो ग्रामीण क्षेत्र में छुपे हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपना खेल दिखाने का मौका मिला। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टीम का भी सिलेक्शन किए हैं और हम लोग देखे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे योगा के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं।
1: भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य गम्हरिया शंभु मंडल ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने अनियमित बिजली आपूर्ति के साथ साथ सही तरीके से केबलिंग नहीं करने तथा स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोलाबिरा क्षेत्र में काफी कम ऊंचाई पर बिजली के तार झूल रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि
2: पूरा जिला में बिजली विभाग का स्थिति चरमरा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा टाइम बिजली गायब ही रहता है। अगर कोलाबिरा क्षेत्र में देखा जाए तो एक स्कूल है जहां उसका आगे में तार झूला हुआ है, 2 से 3 खंभा तक का पोल है। यदि उस जगह में केबल दिया जाए तो सुरक्षित रहेगा। यदि बिजली विभाग से कोई NOC भी मांग रहा है कि भाई हमें आपका बिजली नहीं चाहिए, तो NOC देने के लिए भी बिजली विभाग आनाकानी करता है। 6 महीना तक उसका समय लगाते हैं। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है गाँव घर में और उनका बिल तक अभी जल्दी में नहीं आ रहा है। 6-7 महीना में आ रहा है, हरे भरकम बिल देकर दे रहा है।
1: उत्कल सम्मेलनी द्वारा झारखंड के 3 जिलों पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकला खरसावां में वर्ग 9 एवं 10 के उड़िया छात्रों के बीच उड़िया साहित्य की पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही है। इससे भाषा संरक्षण को लेकर उत्कल सम्मेलनी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को काफी बल मिल रहा है। जिला पर्यवेक्षक सुशील कुमार सारंगी ने कहा कि उड़िया भाषा एवं साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है, ताकि छात्र अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें और भाषा के प्रति उनका लगाव बढ़े। सुशील कुमार सड़ंगी ने कहा कि
3: ओडिया भाषा जो किताब साहित्य किताब 9 एवं 10 का किताब हम लोग निःशुल्क वितरण किए। इस जो किताब हम लोग वितरण किए, यह किताब 1998 यह किताब चल रहा था हम लोग का झारखंड में, लेकिन यह किताब बड़ी दुख की बात है कि झारखंड सरकार द्वारा यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा था। जो हम लोग के झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय दिनेश सरंगी जी के प्रयास से झारखंड में 3 जिला में वितरण किया जा रहा है और उसी के ये में आज सरायकला में भी वितरण किया गया।
1: उत्कल सम्मेलनी द्वारा पाठ पुस्तक वितरण के माध्यम से भाषा संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान को साकार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उड़िया शिक्षकों का मानदेय पिछले 2 वर्षों से लंबित है, जिससे यह अभियान कमजोर पड़ रहा है। बिना मानदेय के शिक्षक इस अभियान को प्रभावी ढंग से कैसे पूरा करेंगे, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला।
4: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। आज है दिन बुधवार और शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार। साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और स्वागत करते हैं आप सभी श्रोता दोस्तों का। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर की नदियों में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम हो रहा है। रिसर्च के मुताबिक भारत सहित दुनिया के ट्रॉपिकल नदियां ऑक्सीजन की कमी का हॉटस्पॉट बन चुकी हैं। करीब 40 साल के डेटा एनालिसिस से पता चला है कि तापमान बढ़ने से पानी में ऑक्सीजन घुलने की क्षमता कम हो गई है। इससे जलीय जीवों के अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी नदियां एक गंभीर और साइलेंट संकट से जूझ रही हैं। ऑक्सीजन

0: वाले हैं। डेटा से पता चला कि दुनिया की लगभग 78.8% नदियां तेजी से अपना ऑक्सीजन खो रही है। हर दशक नदियों से 0.045 मिलीग्राम पर लीटर की दर से ऑक्सीजन कम हो रही है, जो जलीय जीवों के लिए बेहद खतरनाक है। पहले ये माना जाता था कि जहां जलवायु परिवर्तन का असर ज्यादा है, उन ठंडे और ऊंचे अक्षांश वाली नदियां इससे ज्यादा प्रभावित होंगी, लेकिन स्टडीज ने इसे गलत साबित किया। सबसे गंभीर स्थिति ट्रॉपिकल नदियों में देखी गई है, जिनमें भारत की नदियां भी शामिल है। गर्म इलाकों की नदियों में पहले से ही ऑक्सीजन का बेसलाइन स्तर कम होता है, और अब तापमान बढ़ने के कारण ऑक्सीजन घटने की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है, जिससे यहाँ हाइपोक्सिया वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, नदियों के पानी का बहाव और उन पर बने बांध इस संकट को प्रभावित करते हैं। जब नदियों में पानी का बहाव बहुत कम या बहुत ज्यादा होता है, तो वो ऑक्सीजन की कमी को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। सामान्य दिनों के रेस्पेक्ट में कम बहाव वाले दिनों में ऑक्सीजन घटने की दर 18.6% कम पाई गई, जबकि तेज बहाव के दौरान ये दर 7% कम रही। बांधों की बात करें तो उथले या कम गहरे जलाशयों में बांध बनने से ऑक्सीजन की कमी और ज्यादा तेज हो जाती है, जबकि गहरे जलाशयों में ये कमी थोड़ी सुधर जाती है। बढ़ते तापमान और क्लाइमेट चेंज के कारण 62.7% ऑक्सीजन लॉस हुआ है। इसके अलावा नदी के इकोसिस्टम का मेटाबॉलिज्म, जो तापमान, रोशनी और बहाव से तय होता है, ये 12% इसके लिए जिम्मेदार है। हीट वेव, जिससे नदियों का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, ये भी 22.7% ऑक्सीजन की कमी का जिम्मेदार है। दोस्तों, जब नदी के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घटने लगती है, तो जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। मछलियां मरने लगती है, जैव विविधता खत्म होने लगती है, और धीरे धीरे नदी एक डेथ जोन में बदल जाती है। ये सिर्फ प्रकृति की चेतावनी नहीं, बल्कि मानव समाज के लिए भी खतरे की घंटी है। इसलिए हमें जल संरक्षण बढ़ाने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि स्वस्थ नदियां ही स्वस्थ भविष्य की पहचान है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल देते हैं बातों को यही विराम और सुनते हैं भेंटवार्ता। जीवन के संग संग धातुओं का बदलता रंग। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर श्री कृष्ण नारंग। इनसे बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार ठाकुर।
1: मानव सभ्यता के विकास क्रम में धातु एवं धातुकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जीवन के दर्पण में हमें धातुओं के इंद्रधनुषी रंग देखने को मिलते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल में चाहे लौह युग, ताम्र युग और कांस्य युग की बात हो, या फिर वर्तमान काल में नए नए धातुओं की, धातु एवं धातु की जीवन की दिशा और उसकी गति को तय करते हैं। इसमें नए खोज की संभावनाएं आज पृथ्वी से बाहर जाकर समुद्र एवं अंतरिक्ष तक में पहुंच रही है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नारंग साहब की। नारंग साहब, आप धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, आप कैसे देखते हैं कि जीवन के संग संग धातुओं का ये जो बदलता रंग है, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं और क्या महसूस करते हैं?
2: धन्यवाद विनय ठाकुर जी। आधुनिक जीवन में धातुओं के बिना रहना संभव ही नहीं। विश्व में प्रति व्यक्ति धातु की खपत तो विकास का मानक ही बन गया है। जिस देश में जितनी अधिक धातुओं, विशेषतः इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबे और सोने की, उतना ही वह राष्ट्र विकसित माना जाता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आधुनिक शब्द में धातु ही अंतर्निहित है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न धातुओं का प्रयोग सर्वत्र करते हैं, जैसे सुई, चाकू, कैंची से लेकर हवाई जहाज अथवा समुद्री जहाज, या कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, स्कूटर या पुल हो, अथवा मालगाड़ी या रेलगाड़ी, या आजकल के एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हो, या आजकल के स्मार्ट मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप, या फिर उनको चलाने वाली बैटरी सेल। बिना धातुओं के कुछ भी नहीं होगा। जीवन में रंग धातु ही भरते हैं।
1: यानी कि जो धातुओं की जो हम जितनी खपत करते हैं, वो हमारे जीवन के स्तर के एकदम से मानदंड को तय करते हैं।
2: विनय जी, कह ही नहीं सकते, बल्कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। आज भी विश्व व्यापार में सोने को ही सभी मुद्राओं का आधार माना।

0: जाता है। कौन से देश के पास कितना धन है, इसका आधार भी सोना है। व्यक्तिगत रूप में भी सोने को धन का सबसे सुरक्षित रूप माना जाता है। साथ साथ दूसरे धातुओं जैसे चांदी, प्लैटिनम, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, निकल, मैग्नीशियम आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
1: नारंग साहब, थोड़ा हमें इतिहास से जोड़कर ये बताएं कि कैसे समय के साथ साथ इनके रंग बदलते रहे।
0: आदि मानव पत्थरों और प्राकृतिक साधनों से ही अपना काम चलाता था विनय जी, और हम उसे पाषाण युग से जानते हैं। यद्यपि पाषाण युग में भी मानव को सोने व चांदी का ज्ञान तो था, किंतु वे इनका प्रयोग नहीं करते थे। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव ने शिकार अथवा युद्ध के लिए धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया, जिसको हम क्रमशः कांसा युग या ब्रॉन्ज एज और तांबा युग या कॉपर एज कहते हैं। कालांतर में हम लोहे और इस्पात युग में आए, और फिर इसके साथ एल्युमिनियम और अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है।
1: नारंग साहब, इसका अर्थ यह है कि प्राचीन काल में ही धातुओं के अलग अलग तरह के प्रयोग होते थे, जिसमें से कुछ काफी चर्चित है। क्या आप हमें कुछ ऐसे चर्चित उदाहरण बताएंगे जो प्राचीन काल में होते हुए भी आज के विज्ञान भी उसको काफी कौतूहल की नजर से देखता है?
0: जी हाँ विनय जी, बिल्कुल है। आज भी आदिवासी प्राचीन ढंग से इस्पात बनाते हैं, और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में एक आदिवासी परिवार ने इसे बनाकर भी दिखाया था। इस इस्पात से तीर, कढ़ाई तथा कुछ चीजें भी बनाकर दिखाई। चोला नटराज की कांसे की मूर्तियां, जिन्हें लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाया गया था, विश्व प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार डेमास्कस की तलवार, जिसमें वुड स्टील इस्तेमाल होता है और जो भारत, दक्षिण भारत में बने इस्पात से तैयार होती थी, और जिसमें इतनी शक्ति होती थी कि वे तोप को और पतले बाल तक को सुगमता से काट सकती थी, अनोखी थी। इसमें कहते हैं कि नैनो ट्यूब्स और नैनो वायर्स का समावेश था, और बहुत सख्त और तेज होती थी। प्राचीन भारत में धातु कर्म के ये कुछ उदाहरण हैं।
1: नारंग साहब, यदि हम आज की बात करें और हमारे दैनिक जीवन में धातुओं के उपयोग की बात करें, तो कुछ सहज उदाहरण देकर बताएं कि कैसे आज की जिंदगी धातुओं के बगैर कैसी होगी और कैसे चल रही है धातुओं के संग संग।
0: विनय जी, हमारे दैनिक जीवन में तो जहाँ देखो तित धातु ही दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यदि हम बातचीत कर रहे हैं तो ये माइक धातु निर्मित हैं। हमारी आवाज धातु के पतले तार द्वारा संप्रेषित होकर टेप पर रिकॉर्ड हो रही है, जिस पर चुंबकीय लिपण है जो धातुओं के चूर्ण से ही बनता है। यहाँ तक कि बाहर लगा टावर या स्तंभ भी धातु से ही बना है, जिससे तरंगें प्रवाहित होकर प्रसारित होती हैं। इसके अतिरिक्त आपका एटीएम कार्ड हो या जेब में रखा मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर या लैपटॉप, सभी यंत्र धातुओं अथवा मिश्र धातुओं से ही बने हैं। उसके साथ उनको चलाने वाली बैटरी, जैसे लिथियम आयन बैटरी, निकल कैडमियम अथवा लेड एसिड बैटरी भी धातुओं से ही बनती है। रसायन शास्त्र के पीरियोडिक टेबल में कृत्रिम तत्वों को छोड़ दें तो 118 तत्व हैं, जिनमें 91 तत्व धातु ही हैं। यद्यपि आम आदमी केवल सोना, चांदी, लोहे, इस्पात, एल्युमिनियम, तांबे, निकेल, क्रोमियम आदि को ही धातु समझता है।
1: नारंग साहब, समय के साथ साथ हर सभ्यता की पहचान कुछ चीजें बन जाती है। क्या धातुओं से बनी चीजें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक देश की, एक समाज की पहचान की तरह उभर कर सामने आई?
0: विनय जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आधुनिक युग में धातु विकास का प्रतीक है, जैसे पेरिस में ईफल टावर अथवा भारत में ही हावड़ा पुल अथवा कोलकाता में ही हुगली नदी पर बना दूसरा पुल यानी विद्यासागर सेतु हो, या कोलकाता और दिल्ली में दौड़ती मेट्रो रेल हो, या मुंबई और दिल्ली में गगनचुंबी इमारतें, सभी चर्चित हैं।
1: नारंगी, जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो ऊर्जा सहज ही आता है, बगैर ऊर्जा के जीवन संभव नहीं। ऊर्जा से धातु का क्या रिश्ता है, चाहे उसके उत्पादन की बात हो या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसको जरा आप बताएं।
0: बिना जी, बिजली का तो उत्पादन और प्रेषण भी धातुओं के बिना असंभव है। जब तक चुंबकीय क्षेत्र में जो धातु के स्थायी और शक्तिशाली चुंबक, जिसमें सीरियम और यट्रियम आदि धातु मिलाकर बनाते हैं, धातु के बने टर्बाइन ना घूमेंगे, तब तक बिजली पैदा ही नहीं होगी, चाहे वह कोयले से भाप बनाकर अथवा परमाणु ऊर्जा से पानी की भाप से चलने वाले टर्बाइन हो, या भाखड़ा नंगल में बांध बनाकर पानी से चलने वाले टर्बाइन हो। इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली संप्रेषण के लिए भी संचालक धातुओं जैसे तांबे या एल्युमिनियम आदि की आवश्यकता होती है, क्योंकि

0: धातु बिजली और ताप के अच्छे संचालक हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए भी हमें यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम धातुओं की आवश्यकता होती है, जिनमें भंजन यानी फिशन पद्धति से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है।
1: जीवन के संग संग धातुओं का बदलता रंग, अभी आपने सुना ये भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर श्री कृष्ण नारंग, इनसे बातचीत कर रहे थे विनय कुमार ठाकुर। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।
3: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दयाल और हानिया नफीशा की आवाज़ों में आपने सुना कनेक्ट फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे आकांक्षा सेठी ने और संगीत चंद्रा पद्मनाभन ने बनाई थी।

अरिजीत सिंह, निकिता गांधी और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना ये गीत। इस गीत को हमने चुना था फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे और संगीत था

माधव महाजन की आवाज़ में आपने सुना ये गीत फिल्म लॉकडाउन लव स्टोरी से। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम बाकी नगमे इस छोटे से अंतराल के बाद।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

संदीप और पिंकी फरार, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाज़ थी अनु मलिक की, गीत के बोल अनु मलिक और दिवाकर बैनर्जी ने लिखे थे और संगीत अनु मलिक ने बनाई थी।

0: मनान भारद्वाज और हरजोत कौर की आवाज में आपने सुना राधे श्याम फिल्म का ये गीत। कुमार के बोल थे और संगीत मनान भारद्वाज ने बनाई थी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

साइना फिल्म का ये गीत आपने सुना, अरमान मलिक की आवाज थी, कुणाल वर्मा के बोल और संगीत था अमाल मलिक का।

अरमान मल्लिक और साथियों की आवाज़ों में दोनों फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत के बोल इरशाद कामिल ने लिखे थे और धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने।

लाल सिंह चड्ढा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, अरिजीत सिंह, शादाब फरीदी और अल्तमस फरीदी की आवाजें थी। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी

0: स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे

0: नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत

0: अगर जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही

महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है।
चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक

0: शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
2: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी, और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me

0: In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities, where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
2: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
0: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से

0: solutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत के इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
2: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला है, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
3: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ, जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
0: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है।

0: यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
1: कभी दुनिया के

0: सौंदर्य ने इनके स्वच्छंदतावादी कवि को सबसे अधिक आकृष्ट किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तन प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला विशाल। पंत जी को शुरू से ही प्रकृति की अक्षय सुषमा से प्रेम रहा, छोड़ दुर्मो की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रकृति की तरंगों से तथा इंद्रधनुष के रंगों से उन्हें अपार मोह है। पंत जी प्रकृति की ओर न केवल झुकते हैं बल्कि उसे महत्व देकर उसकी स्वतंत्रता को काव्य में प्रतिष्ठित भी करते हैं। प्रकृति की भांति पंत जी ने नारी को नवीन भाव दृष्टि से देखा है। यह सच है कि छायावादी कविता में ही नारी की प्रधानता है। इस युग में कवियों ने नारी सुधार आंदोलन की धमक भी काफी गहरी है। 20वीं शताब्दी में नारी शिक्षा का जोर बढ़ा और नवजागरण के प्रति नारियां भी सतर्क हो गईं। पहली बार नारी ने मुक्ति की सांस ली और व्यक्तिक प्रेम का उदय हुआ। नारी प्रेम को इस काव्य में जो स्वच्छंद दृष्टि मिली वह संबंधहीन और अद्भुत है। पुरानी नैतिकता का बंधन तोड़कर वह पुरुष से मिलने के लिए स्वतंत्र हो गई। मुक्त करो नारी को मानव, चिर वंदनी नारी को युग की वरवर कारा से जननी सखी प्यारी को। छायावादी काव्य दर्शन में पंत जी प्रकृति और नारी के नवजागरण वादी नवीन दृष्टिकोण को लेकर बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन दर्शन पर विवेकानंद, उपनिषद, रामकृष्ण, टैगोर और गांधी के विचारों की सीधी छाप पड़ी। अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों ने भी उनके जीवन दर्शन को नया रूप दिया। सन 1934 ईस्वी के बाद पंत जी ने मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपना लिया और लिखा, धन्य मार्क्स, चिर तमच्छन पृथ्वी के उदर शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। उस समय मार्क्सवाद के मानवतावादी पक्ष को पंत जी ने ग्रहण किया, किंतु जल्द ही वे फिर भार दिए अध्यात्म की ओर मुड़ गए। मार्क्सवाद का निरीश्वरवाद भी उनकी जीवन दृष्टि के अनुकूल नहीं पड़ा। वे आत्मा और ईश्वर की ओर अरविंद दर्शन का सहारा पाकर स्वर्ण किरण, अतिमा आदि में मुड़ गए और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी अरविंद के अंतर चेतनावादी दर्शन में ही मिला। पंत जी के कथ्य और कथन के बीच किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं है। उनकी काव्यानुभूति का अभिव्यक्ति पक्ष अत्यधिक समृद्ध है। अनुभूति एवं अभिव्यक्ति के अभेद ने उनकी कला को एक अखंड सौंदर्य में ढाल दिया। पंत जी ने छायावाद के प्रमुख काव्य रूप प्रगीत को अपनाया और उसे अपनी अंतर्मुखी भाव साधना में ढालकर चमका दिया। झमझम झम मेघ बरसते रे सावन के, छम छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। पंत जी ने खड़ी बोली का उन्मुक्त कल्पना से रंग कर काव्य भाषा में नवीन अर्थ का प्रकाश पैदा कर दिया है। उन्होंने बिंब और प्रतीक के लक्षण मूलक प्रतीकों का अधिक प्रयोग किया है और प्रभाव साम्य पर अधिक बल दिया है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों की तान, प्रकृति से प्राप्त ताजे उपमानों और नूतन छंद भंगिमाओं के कारण पंत जी का काव्य आधुनिक हिंदी कविता की विशिष्ट उपलब्धि है।
1: सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सफीउल्लाह अंसारी की वार्ता और अब आइए सुनते हैं आभा विश्वकर्मा से उनकी कविताएं।
2: मेरी पहली कविता है अभी पलाश का मौसम है। अभी पलाश का मौसम है, शहर के भीड़ और भागम भाग से दूर सड़क के दोनों ओर लंबी कतार में तनकर खड़े हैं पलाश के पेड़, और जहां तक नजरें जाती हैं जंगल के आग ही दिखाई देते हैं। सावन के आने की आहट, टेसू के मुलायम पुष्प, खुशनुमा और प्रफुल्लित वातावरण उल्लास और खुशहाली की ओर इंगित करते हैं। सावन के आने की आहट, टेसू के मुलायम पुष्प, खुशनुमा और प्रफुल्लित वातावरण उल्लास और खुशहाली की ओर इंगित करते हैं। मेरे किंगसुक के कुछ मंजरी को तोड़ने पर वृक्षों को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए ढाक के कुछ फूलों को उनके शाखों से दूर कर दिया है और तुम्हारे जल में भिगो दिया है स्वर्ण रेखा। इनके कोमल पंख

0: खुरियों को तुम्हारे पानी में उंगलियों से स्पर्श करना मुझे ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है और मैं पलाश की तरह कुछ कुछ लाल और पीला बन जाती हूँ। अभी पलाश का मौसम है। मेरी दूसरी कविता है कटाक्ष की तरह। कटाक्ष की तरह तुम्हारे जल के छींटे मेरे चेहरे पर पड़े हैं स्वर्ण रेखा। दोहरे अर्थ वाले शब्दों को हलक से उतारना नागवार हो गया है। मैंने तो अलग थलग कर ली है खुद को रिश्ते नातों से, सगे संबंधियों से, आसपास के लोगों से, मेरे अकेलेपन से, एकाकीपन से, अलगाव से। क्यों परेशान और हैरान रहती है दुनिया, मेरे समझ से परे है और नामुमकिन भी। खुदगर्ज होना इसलिए अकेले जीना ही रास आता है। मेरे अकेलेपन से, एकाकीपन से, अलगाव से क्यों परेशान और हैरान रहती है दुनिया, मेरे समझ से परे है और नामुमकिन भी। खुदगर्ज होना इसलिए अकेले जीना ही रास आता है। आज तुम्हारे पानी में ठंडक और राहत नहीं है। तानों से भीगा है तुम्हारा जल और मेरे क्रंदन से भारी हो गई है तुम्हारी गर्भ। पीड़ा और कष्ट से मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं। शायद तुम बहुत व्यस्त हो आज, इसलिए उदास और बोझिल मन से वापस चल पड़ी हूँ घर की ओर स्वर्ण रेखा। मेरी अगली कविता है मैं तुम में शिव और शक्ति। मैं तुम में शिव और शक्ति दोनों रूपों को देखती हूँ स्वर्ण रेखा। तुम्हारी जल की धारा शिव की जटा से निर्मित होकर अनंत सागर में समाहित हो जाती है। जो सर्वव्यापी और सार्वभौम है उसकी शांत शीतल नील वर्ण तुम्हारे जल को गौरवान्वित करते हैं। अचिंत्य अनिकात्मा अनघा अष्टमूर्ति जो कल्पना और परिकल्पना से परे हैं, तुम्हारे धवल उज्जवल नीर की मर्यादा है। मैं उस शिव को देखती हूँ निहारती हूँ तुम्हारे बहते पानी में स्वर्ण रेखा। अचिंत्य अनिकात्मा अनघा अष्टमूर्ति जो कल्पना और परिकल्पना से परे हैं, तुम्हारे धवल उज्जवल नीर की मर्यादा है। मैं उस शिव को देखती हूँ निहारती हूँ तुम्हारे बहते पानी में स्वर्ण रेखा। वीरूपाक्ष के मस्तक का हंसुली जैसा चांद जब तुम्हारे पानी में प्रतिबिंबित होता है, वह क्षण मेरे लिए शिवरात्रि का होता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हारे जल को नतमस्तक करती हूँ, अंजुरी में भरती हूँ, ताकि उस मृत्युंजय और महेश्वर की कृपा और आशीर्वाद का पात्र बन सकूं। मेरे लिए तो तुम्हारे जल का स्पर्श मात्र ही शिवरात्रि है स्वर्ण रेखा। मेरी अगली कविता है मैं पूर्ण और सक्षम हूँ। मैं पूर्ण और सक्षम हूँ स्वयं में, खुद में, अपने आप में। न स्पर्धा है किसी से, न बराबरी, न ही जरूरत है सहानुभूति कृपा और करुणा की। मैं तो निरंतर बह रही हूँ तुम्हारी तरह स्वर्ण रेखा। मुझे सशक्तिकरण और नारी दिवस के अर्थ और संदर्भ समझ नहीं आते और न ही पुरुष के साम्य होना। मुझे सशक्तिकरण और नारी दिवस के अर्थ और संदर्भ समझ नहीं आते और न ही पुरुष के साम्य होना। मैंने तो अपने स्त्रीत्व को तुम्हारे जल में भिगो दिया है और अवर्णनीय सुख की अनुभूति कर रही हूँ। सिर्फ इतना जानती हूँ एक स्त्री ही स्त्री को समझ सकती है, इसलिए तुमसे बहुत करीब और निकट हूँ स्वर्ण रेखा।
1: अभी आप आभा विश्वकर्मा से उनकी कविताएं सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं संतोष कुमार चौबे से उनकी कविताएं।
2: बहुत ही खूबसूरत सा फिजा में आज मंजर है, लगे मुझको यहाँ पर आज मेरा भी स्वयंवर है। हमें भी गरजने को आज बोला चांद तारों ने, घटा से हम चले मिलने जमी पर आज अंबर है। हमें भी गरजने को आज बोला चांद तारों ने, घटा से हम चले मिलने जमी पर आज अंबर है। मैं यूं ही तो नहीं बैठा, मैं यूं ही तो नहीं बैठा, तुम्हारे दरमियां यारो धकेला है जिसे हमने, बहुत भारी समंदर है, धकेला है जिसे हमने, बहुत भारी समंदर है। मिला है आज मुझको जो, मिला है आज मुझको जो, कभी तेरा हुआ करता, कभी तेरा मुकद्दर था, अभी मेरा मुकद्दर है। कभी तेरा मुकद्दर था, अभी मेरा मुकद्दर है। अभी जीता जमी है, अभी जीता जमी है, जीतना अब आसमां भी है। कभी तुम भी सिकंदर थे, अभी तो हम सिकंदर हैं। कभी तुम भी सिकंदर थे, अभी तो हम सिकंदर हैं। कहीं कांटे मिले हमको, कहीं पर फूल भी पाया। कहीं कांटे मिले हमको, कहीं पर फूल भी पाया। सफर कल भी भयंकर था, सफर अब भी भयंकर है। कहीं कांटे मिले हमको, कहीं पर फूल भी पाया। सफर कल भी भयंकर था, सफर अब भी भयंकर है। किसे मुश्किल नहीं होगी, किसे मुश्किल नहीं होगी, समय किसका हुआ अपना। किसे मुश्किल नहीं होगी, समय किसका हुआ अपना। समय कल भी सितमगर था, समय अब भी सितमगर है। यहाँ किसको दिखाते हैं, यहाँ किसको दिखाते हैं, अहम एक दूसरे को हम। यहाँ किसको दिखाते हैं, अहम एक दूसरे को हम। न तुझ में खास अंतर था, न मुझ में खास अंतर है। न तुझ में खास अंतर था, न मुझ में खास अंतर है। मिलेगा कल वही हमको, मिलेगा कल वही हमको, जो जिसके भाग्य में होगा। मिलेगा कल वही हमको, जो जिसके भाग्य में होगा। यही तेरा भी मंत्र था, यही मेरा भी मंत्र है। यही तेरा भी मंत्र था, यही मेरा भी मंत्र है। और रहा है देश अपना, इस जहां में आज भी सुंदर। रहा है देश अपना, इस जहां में आज भी सुंदर। यहां है राम कृष्णा बुद्ध, घर घर में दिगंबर है। यहां है राम कृष्णा बुद्ध, घर घर में दिगंबर है। और कहे संतोष कब किसको, खुदा अब इस जमाने में। कहे संतोष कब किसको, खुदा अब इस जमाने में। खुदा तेरे भी अंदर था, खुदा मेरे भी अंदर है। कहे संतोष कब किसको, खुदा अब इस जमाने में। खुदा तेरे भी अंदर था, खुदा मेरे भी अंदर है। एक दूसरी रचना जो सावन और बारिश से संबंधित है, शीर्षक मैंने दिया है आंसुओं से कल बही बारिश। जहां देखा जमी कल, ढूंढती हर पल रही बारिश। जहां देखा जमी कल, ढूंढती हर पल रही बारिश। पहाड़ों पे बहे दरिया, जमी पर ना कहीं बारिश। पहाड़ों पे बहे दरिया, जमी पर ना कहीं बारिश। किसी का दिल भरा बारिश की बूंदों में नहाकर कल। किसी का दिल भरा बारिश की बूंदों में नहाकर कल। किसी के आंखों से ही आंसुओं सी कल बही बारिश। किसी के आंखों से ही आंसुओं सी कल बही बारिश। परी बरसों नहीं झुका, परी बरसों नहीं झुका, कभी इससे कोई पर्वत। परी बरसों नहीं झुका, कभी इससे कोई पर्वत। जमी पर आसमां भी गर झुका पाती यही बारिश। जमी पर आसमां भी गर झुका पाती यही बारिश। और भरा मन है भरा तन है, भरा मन है भरा तन है, तरस दिल है रहा फिर भी। भरा मन है भरा तन है, तरस दिल है रहा फिर भी। ये कैसी प्यास है जिसको बुझा पाती नहीं बारिश। ये कैसी प्यास है जिसको बुझा पाती नहीं बारिश। भरा मन है भरा तन है, तरस दिल है रहा फिर भी। ये कैसी

0: प्यास है जिसको बुझा पाती नहीं बारिश, और यहाँ संतोष अब किसको मिला, यहाँ संतोष अब किसको मिला, कितना परे बारिश, यहाँ संतोष अब किसको मिला, कितना परे बारिश, सभी होते यहाँ खुश अगर हुआ होता सही बारिश, सभी होते यहाँ खुश गर हुआ होता सही बारिश।
1: अभी आप संतोष कुमार चौबे से उनकी कविताएं सुन रहे थे और ये था आज की साहित्यिक यात्रा का अंतिम पड़ाव। इस अंक के संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। अब मुझे यानी शिखा खोरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम स्वर्ण रेखा अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन, राग होगा अमन। तो उस्ताद अमजद अली खान से सरोद पर आइए सुनते हैं राग यमन।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन राग था यमन। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में।

0: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज चैट बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
3: Thank you. आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे।